आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज, GFM 90.4।

0: दरिया सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान, रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
3: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: अल्लाह। अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अल्हम्दुलिल्लाह वो सिया रात अब खत्म होने को है और तरक्की और खुशहाली का सूरज तुलू होने को है। हमारी हुकूमत ने वादा किया था कि हम जब कमी आएगी तो एक एक पाई कौम को वापस लौटाएंगे।
2: महंगाई से ठेला अवामा की रिलीफ, पेट्रोल 74.28 रूपया एंड डीजल 57.31 रूपया सस्तो, पेट्रोल डिवीजन 12 नोटिफिकेशन जारी करने बाद रात 12 बजे का नवा लाग जन लागू थी पाया। 74.28 रूपया की लाद का पेट्रोल जो फी लीटर 299.50 रूपया थी पो, डीजल 9 अघ 311 रूपया 47 पैसा मुकरर। वजीर आजम शहबाज शरीफ चो तो वायदो कौम से हो अलहमदुल्ला वो पूरो कयो, तेल अघन में घटताई जो फायदो बिना देर अवाम के मुंतकिल किया है। पेट्रोल ते फी लीटर लेवी में 40.49 रूपया लाथ, डीजल ते फी लीटर लेवी में 19.71 रूपया इजाफो। पेट्रोलियम डिवीजन के जरिए मूजब डीजल ते लेवी 53.26 रूपया में बधाए 72.97 रूपया कई वही। पेट्रोल ते फी लीटर लेवी 106.74 रूपया में घटाए 66.25 रूपया कई वही है।

0: ईरान ऐं अमरीका विच में मफ़ामती यादाश्त ते सयूं पाकिस्तान जी वॾी कामयाबी आहे। क़ौमी असेंबली में ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ चयो आहे त इस्लामाबाद मुआहिदे खे हतमी शकल ॾियारण में फील्ड मार्शल सदा उसम मुनीर अहम किरदार अदा कयो। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ऐं घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जो किरदार बसारा जोॻो रहियो। ईरान अमरीका मुआहिदे सां दुनिया में पाकिस्तान जो वक़ार वधियो आहे। ईरानी सदर फोन करे पाकिस्तान ऐं क़ौम जा थोरा मञा। मूंखेसि पाकिस्तान जे दौरे जी दावत ॾिनी। क़ौमी वहादत लाइ असां सभु हिकु आहियूं ऐं हिकु रहंदासीं। जंगबंदी सां खिते में मुआशी खुशहाली ईंदी। ईरानी सदर शहीद आयतुल्ला खमनाई जी आख़िरी रस्म में शिरकत जी दावत ॾिनी आहे। आख़िरी रस्मूं 3-4 जुलाई ते थींदियूं। पाकिस्तानी वफ़द बि शरीक थींदो। क़ौमी असेंबली ईरान अमरीका मुआहिदे ते क़ौमी क़यादत खे भेटा पेश करण वारो ठहराउ मंज़ूर करे वरितो। वज़ीर आज़म नायब वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल वफ़ाकी घरू वज़ीर समेत ॿी क़यादत खे भेटा पेश कई वई।
1: I'll tell you, I got to know some that I didn't know very well in Pakistan. You have the field marshal.
2: Munir.
1: Who's great. Munir, he's great. And you have the prime minister, and they just get along great. I figured, well, maybe the military guy would be, he totally respects the prime minister. It's a beautiful thing to see. But they really helped us with this deal. They were, you know, they knew the Iranians, they knew the people, and...
0: अमरीकी सदर ट्रंप हिकु भेरो ॿीहर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं फील्ड मार्शल सदासम मुनीर जी तारीफ़। अमरीकी वेबसाइट खे इंटरव्यू ॾींदे ट्रंप जो चवण आहे त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं फील्ड मार्शल सदासम मुनीर अज़ीम शख़्सियतूं आहिनि। पाकिस्तानी क़यादत ईरान मुआहिदे में वॾी मदद कई। फील्ड मार्शल सदासम मुनीर पंहिंजे वज़ीर आज़म जो मुकमल एतराम करे थो, जेको बहितरीन ऐं ख़ूबसूरत अमल आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं सऊदी वली अहद शहज़ादे मोहम्मद बिन सलमान विच में फोन ते राब्तो। सऊदी वली अहद वज़ीर आज़म खे ईरान अमरीका अमन मुआहिदे ते मुबारकबाद पेश कई। वज़ीर आज़म अमन जी कोशिशुनि लाइ पाकिस्तान जी हिमायत ते सऊदी वली अहद जा थौरा मञिया। ॿिन्ही अॻवाननि इतफ़ाक़ कयो त ईरान ऐं अमरीका खे रहियल मामला बि ॻाल्हियुनि ज़रिए हल करण घुर्जनि। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ चवणो हो त सऊदी ऐं विच ओभर जे रियासतनि जी हिमायत सां ॻाल्हियूं कामयाब थियूं। इस्लामाबाद मुआहिदे जी सयूं वॾी कामयाबी आहे। उमीद आहे त ॻाल्हियुनि जो ईंदड़ मरेलो बि कामयाब थींदो। सऊदी वली अहद चयो त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जी कोशिशुनि सां अमन मुआहिदो थियो। जंगबंदी मुआहिदे बावजूदि इसराइल जे लबनान ते हमला न रुकिया। इसराइली हमलनि में शहीद थियलनि जो अंग वधी 47 थी वियो। 97 ज़ख़्मी। लबनानी अख़्तियारनि मूजिबि इसराइली फ़ौज नबकिया ते बमबारी कई आहे, जंहिं जे नतीजे में केतिरा ई घर बि तबाह थी विया आहिनि। हिज़बुल्लाह जवाबी हमलनि में 4 इसराइली फ़ौजी मारिजी विया। इसराइली हमलनि हिज़बुल्लाह जे जवाबी कार्रवाई बाद ॿिन्ही विच में जंगबंदी ते इतफ़ाक़ ऐं अमल बि शुरू थी वियो। जेडे विंसर खां पोइ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जी बि इसराइल ते तनक़ीद। ट्रंप चयो आहे त मानो हुजा हा त इसराइल ख़तम थी चुको हुजे हा। नेतन याहू सां बहितर लाॻापाइनि पर खेसि क़ाबू रखणो पवंदो। अमरीकी हथियार इसराइल खे बचाए रहिया आहिनि। इसराइली वज़ीर दुनिया में पंहिंजे अकेले ऐं ताक़त वारी तारीख़ खे निशानो बणाए रहिया आहिनि। सदर ट्रंप ते तनक़ीद कंदड़ इसराइली वज़ीर होश खां कम वठे, ज़मीनी हक़ीक़तनि जाइज़ो वठनि। टंडो मस्ती जी रुबीना उर्फ खालदा चांडियो खे बेगुनाह क़तल कयो वियो। कारे इल्ज़ाम हेठि बेदर्दी सां क़तल कयल खालदा चांडियो बाबति अहम रिपोर्ट साम्हूं अची वई। लम्स यूनिवर्सिटी जी लेबॉरेटरी मां जारी कयल रिपोर्ट मूजिबि रुबीना उर्फ खालदा चांडियो सां कंहिं बि क़िस्म जी ज़्यादती जा सबूत न मिलिया आहिनि। नारी बेडोही हुई ऐं खेसि रुगो शक जे बुनियाद ते क़तल कयो वियो। हू ॻोठ अबिटो चांडियो में 2 महीना अॻु खालदा चांडियो खे कारे इल्ज़ाम मड़े क़तल कयो वियो हो। बलोचिस्तान हुकूमत जो तेज़ाब गर्दी जो शिकार डॉक्टर महानूर खे इलाज लाइ अमरीका मोकिलण जो फ़ैसिलो। कुझु ॾींहं कोयटा जे सेडमिन अस्पताल में जवाबदार डॉक्टर महानूर नासर तेज़ाब हारे छॾियो हो। पुलिस जी मुबैना मुक़ाबले में जवाबदार मारिजी वियो हो। बलोचिस्तान जे वॾे वज़ीर जे ख़ासि मामन डॉक्टर शाहिद रिंद जो चवण आहे त डॉक्टर महानूर जो कराची जे निजी अस्पताल में 1 हफ़्ते ताईं इलाज जारी रहंदो, जंहिं बाद खेसि इलाज लाइ परॾेह मोकिलियो वेंदो। उन लाइ ज़रूरी कार्रवाई जी शुरूआत करे छॾी आहे।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: सिंध के माथे का झूमर
5: GFM 88 नेटवर्क,
6: सिंध की आवाज।
5: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज। GFM 90.4.
2: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
6: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
6: जी हा, 2315525786।
2: GFM रेडियो नेटवर्क,
6: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद से कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: महांगाई सटियल अवाम के रिलीफ, पेट्रोल 74.28 रुपया एंड डीजल 67.31 रुपया सस्तो। पेट्रोलियम डिवीजन नोटिफिकेशन जारी कर 74.28 रुपयनि जी लात खां पोइ पेट्रोल जो फी लीटर 299.50 रुपया थी वियो ऐं डीजल जो नओं अघु 311.47 रुपया मुक़रर। नवा अघु रात 12 वॻे खां लागू थी वेंदा। वज़ीर आज़म जो चवण हो त जेको वाइदो क़ौम सां कयो हो अलहमदुल्ला उहो पूरो कयो आहे। तेल अघनि में घटिताई जो फ़ाइदो बिना देर अवाम खे मुंतक़िल कयो आहे। ईरान ऐं अमरीका विच में मफ़ामती याददाश्त ते सयूं पाकिस्तान जी वॾी कामयाबी आहिनि। क़ौमी असेंबली में ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म चयो आहे त इस्लामाबाद मुआहिदे खे हतमी शिकिल ॾियारण में फील्ड मार्शल अहम किरदारु अदा कयो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ऐं घरू वज़ीर मोहसिन नकवीअ जो बि किरदारु साराह जोॻो रहियो। ईरान अमरीका मुआहिदे सां दुनिया में पाकिस्तान जो वक़ार वधियो आहे। ईरानी सदर फोन करे पाकिस्तान ऐं क़ौम जा थोरा मञिया। मूं खे पाकिस्तान जे दौरे जी दावत ॾिनी। क़ौमी वहदत लाइ असां सभु हिकु आहियूं ऐं हिकु रहंदासीं। जंगबंदीअ सां खिते में मुआशी खुशहाली ईंदी। ईरानी सदर शहीद आयतुल्लाह खामनाई जी आख़िरी रस्मुनि में शिरकत जी दावत ॾिनी। आख़िरी रस्मूं 3-4 जुलाई ताईं थींदियूं। पाकिस्तानी वफ़द बि शरीक थींदो। क़ौमी असेंबली ईरान अमरीका मुआहिदे ते क़ौमी क़यादत खे भेटा पेश करण वारो ठहराउ बि मंज़ूर करे वरितो। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, वफ़ाकी घरू वज़ीर समेत ॿी क़यादत खे भेटा पेश।

इस्लामाबाद मफामती यादाश्त नामे ते सयन बाद अमरीका ऐं ईरान विच में अॼु रिथियल ॻाल्हियूं मुल्तवी। व्हाइट हाउस तस्दीक करे छॾी। अमरीकी नायब सदर जे डी वेंस जो बि स्विट्ज़रलैंड जो दौरो मुल्तवी कयो वियो। स्विस अख़्तियार मूजिब अमरीका ऐं ईरान विच में अॼु रिथियल ॻाल्हियूं न थींदियूं। ॻाल्हियुनि लाइ तयारियुनि जो अमल जारी रहंदो। स्विट्ज़रलैंड ॻाल्हियुनि जी मेज़बानी ऐं सहूलतकारी लाइ बदस्तूर तयार आहे। स्विस अख़्तियारनि ॻाल्हियुनि जी नई तारीख़ बाबति आगाह न कयो।

0: जेडी वेंट्स खां पोइ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जी इसराइल ते तनक़ीद। ट्रंप चयो आहे त मां न हुजां हा त इसराइल ख़तम थी चुको हुजे हा। नेतन्याहू सां बहितर लाॻापा आहिनि पर खेसि काबू रखणो पवंदो। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंट्स बि चयो आहे त अमरीकी हथियार इसराइल खे बचाए रहिया आहिनि। इसराइली वज़ीर दुनिया में पंहिंजे अकेले ऐं ताक़तवर इतिहादीअ खे निशानो बणाए रहिया आहिनि। सदर ट्रंप ते तनक़ीद कंदड़ इसराइली वज़ीर होश खां कम वठी ज़मीनी हक़ीक़तनि जो जाइज़ो वठनि।
1: आप सुन रहे थे फिल्म नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: अजरक के रंगों से रंगी क्लिया आवाज
3: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0333

0: 2527786।
1: जी हाँ, बुड़ी 331 5575786।
0: जी एफ एम रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

सकल हक हासिल न थोसी ये खण न

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: फैन, तू ना मेरा हेटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
5: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
5: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हाँ, बुड़ी 331 5 5 786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ DAFM 88 नेटवर्क ते।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो DAFM 90.4।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: तपोए DAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
4: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाइन लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 0331252576।
4: जी हाँ 2315525786
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: पी जे इलाके बनू में वेन ए कार रोड ते लगायल बारूदी मवाद से टकराइज बिन इमदादी कारकुनन समेत सत जणा मारजी विया टे जख्मी। डीपीओ बनू चयो आहे त मरका बेरा में रोड भरसा धमाके सां वेन में सवार पंज ऐं कार में सवार ॿ जणा मारजी विया। लाश ऐं टे जख्मी अस्पताल मुंतकल बारूदी मवाद रोड जे किनारे सां लॻायो वियो हो। चीनी सदर सेप्टेम्बर में अमरीका जो दौरो कंदो। मां बि हलंदड़ साल ॿीहर चीन वञी सघां थो। अमरीकी सदर ट्रम्प चयो आहे त ईरान जे मामले ते चीन अहम किरदार अदा कयो। चीन ईरान खां पंहिंजी ज़रूरतुनि जो 50% तेल ख़रीद कंदो आहे। इसराइल सां अमरीका जा बहितरीन लाॻापा आहिनि। ईरानी पटी वज़ीर अब्बास राखी जे स्विट्ज़रलैंड जे दौरे चयम कान। अमरीकी ख़सूसी नुमाइंदो स्टीव विटकोफ स्विट्ज़रलैंड वेंदो। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट मूजिब स्टीव विटकोफ ईरान सां एटमी मामलनि ते ॻाल्हियुनि लाइ स्विट्ज़रलैंड वञी रहियो आहे। ईरानी वफ़द बि स्विट्ज़रलैंड पहुचंदो। सिंध जे खुराक खाते में अरबे रुपयनि जी करप्शन कंदड़ पंजनि आफ़ीसरनि मुलाज़मनि खे नौकरियुनि मां निकाली। ज़िमेवारनि खां 2.58 अरब खां वधीक उगाड़ण जो बहुकम केस एंटी करप्शन हवाले। फूड इंस्पेक्टर गंदकोट बलक शेर शेख, फूड सुपरवाइज़र गोलाट सिंह हबीबुल्ला अबड़ो।
1: वर्क टुडे इज़ ब्रोकन, वी आर ऑल वर्किंग इन टू मेनी डिस्कनेक्टेड एप्स एंड इट्स किलिंग टीम प्रोडक्टिविटी, बट फॉर द फर्स्ट टाइम देयर इज़ अ प्लेटफॉर्म दैट फिक्सेस इट बाय कंबाइनिंग एवरीथिंग यू नीड।
0: खुराक खाते जे सूबाई वज़ीर मखदूम महबूब ज़बान चयो आहे त बरतरफ़ आफ़ीसरनि जा केस एंटी करप्शन खे मोकिलिया विया आहिनि। ज़िमेवारनि खां पैसा उगाड़ण लाइ अदालतुनि में सिविल सूट दाख़िल कया वेंदा। सेवण में 4 ॾींहं घर ठाहिण लाइ बैंक मां पैसा वठण बाद गुम थियल पीटसन जो लाश अतगोट नौवान जो रवासी 58 साल मोहम्मद सदीक हाल पुट जो लाश जहाज चौक तां मिलियो। केस दाख़िल पीटसन जे वारसनि चुड़ैत जवाबदार। पीटसन खे पैसनि जे लालच में अॻवा करे तशदुद बाद क़तल कयो आहे। पनवाकल मां अॻवा थियल 1.25 करोड़ जी बाज़ियाबी लाइ शहरनि जी एहतजाजी रैली। सिहत समाज धुरन बेनज़ीर पार्क खां ईद चौक ताईं रैली कढी। पनवाकल मां अॻवा थियल 1.25 करोड़ ऐं सालेपट मां अॻवा थियल नीगरी प्रिया कुमारी खे बाज़ियाब कराइण जो मुतालबो कयो। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में किथे मिटीअ जो तूफ़ान त किथे वरी बरसाति। बिजली बंदि शिकारपुर ऐं बरपासे में मिटी जो तूफ़ान ऐं बरसाति सां बिजली बंदि थी वई। मीर साहब मीरपुर बुडो में बि तेज़ तूफ़ान जो वसकारो। तेज़ तूफ़ान ऐं मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि जी बिजली बंदि थी वई। बलूचिस्तान जे उस्ता मामन में बि ककर वसी पिया। मौसम ख़ुशगवार। पितोरो में आबाद घरनि पारां पाणी कोट ख़िलाफ़ एहतजाज। पली माइनर मां निकरंदड़ सैद खी शाख जे पुटड़ी जे आबाद घरनि पाणी कोट ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। पाणी फराहम करण जो मुतालबो। मीरपुर भठोरो वेझो झोक शरीफ़ में बि आबाद घरनि जो पाणी जे कोट ख़िलाफ़ एहतजाज। ज़रे पाणी जी कोट ख़तम करण जो मुतालबो। सखत जी अदालत पनवाकल में मुक़ाबिलो जणाए मारियल जहांगीर जखरण जो केस दाख़िल करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। सखत जी अदालत एसएचओ अब्दुल शकूर लाकू समेत 9 अहलकारनि ख़िलाफ़ एफआईआर खे केस दाखिल करण जो हुकुम ॾिनो। डिस्ट्रिक्ट ऐं सेशन जज सखर अला बचायो कबूल एफआईआर दाख़िल करण वारे केस जी ॿुधणी कई। दरख़्वास्त गुज़ार सफ़दर जखराणी मक़सूल जी नियाणी मुक़दस ऐं वकील मुर्तज़ा कोराई अदालत में पेश थिया। अदालत चयो त एसएचओ अब्दुल शकूर लाकू एएसआई ख़ालिक नो जतोई ऐं पुलिस अहलकारनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल कयो वञे। पनवाकल पुलिस 16 अक्टूबर 2025 ते जहांगीर कोराई खे मुक़ाबले में मारण जी दावा कई हुई। ऐं खेपरो में पीरसन पीउ खे क़तल कंदड़ ॿिन्ही पुटनि खिलाफ़ मक़तूल ख़ासि खेपरो थियण ते केस दाख़िल करायो। केस में जवाबदार ज़हूर ऐं पीउ खे क़तल कयो। केस दाख़िल करण बावजूद पुलिस जवाबदार गिरफ़्तार करण में नाकाम आहे।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
2: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
3: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
3: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252578 6।
3: जी हाँ 2315525786।
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GFM 90.4।
3: छावां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: तपोए GFM 90.4 मातली बदी निक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 0331252578 6।
4: जी हाँ 2315525786
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क आवाज।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मुबारक डेण से गड गाल ईंदड़ मरहले बाबत मुशावरत कंदो। ईरानी परडे वजीर अब्बास इराकी के अज स्विट्जरलैंड के दौरे का इम्कान। अमरीकी खसूसी नुमाइंदो स्टीव विटकोफ स्विट्जरलैंड पहुंतल। अमरीकी न्यूज वेबसाइट मूजिब स्टीव विटकोफ ईरान से आटमी मामलों के गाल स्विट्जरलैंड पहुंतो है। ईरानी वफद भी स्विट्जरलैंड पहुंचो। चीनी सदर सेप्टूबर में अमरीका जो दौरों कंदो। मां हलंदड़ साल बीहर चीन वही सो। अमरीकी सदर ट्रंप चाहवा ईरान के मामले से चीन अहम किरदार अदा किया। चीन ईरान का पैं जरूरत जो 50% तेल खरीद कन् इसराइल से अमरीका जा बेहतरीन लागापा। असाजी कोशिश रंग लातो है खिते में जंग खत्म थी है। पाकिस्तान अमरीका ईरान के गाल मेज से विहार। पाकिस्तान जंग रोकने में अहम किरदार अदा कर। वजीर आजम फील्ड मार्शल ए आवाम के वाधायू पेश कया तो। कौमी असेंबली में बजट के सीढ़ींदे दाणे वाले वजीर मोहम्मद औरंगजेब चाहवा तो टैक्स निजाम में बुनियादी सुधारा कया। नंडन आबाद घर के बिना ब्याज कर्ज डा। आलमी मार्केट में तेल सस्तो थियण जो तकड़ो रिलीफ आवाम के डनो है। सिंध असेंबली में बजट से बहस जारी। अपोजिशन मेंबर की बजट से तनकीद। 18 साल का मौजूद मसला हल न थियण जो दाहूं। एमक्यूएम एमपीए फहीम पटनी चयो तो 18 तरमीम से सूबे में अमल न थियण सबब मसला आहिन। सूबो वफाक का पैसा वठी विरासत न थो करे। पीपीएमपीए नूर मोहम्मद बुरगड़ी चयो तो चोर दरवाजे का नायू आया। बोर्ड सबब मुझे तख्त ज मुतासर थियल स्कूल ठाए डना वन। आबादगारन जो पानी मसले पानी ला परेशान। पंजाब पारा रोकियल पानी वठी खोट खत्म कई वे। केपी के इलाके बनू में वेन ए कार रोड से लगायल बारूदी मवाद से टकराज पयों। बिन अमदादी कारकुन समेत 7 जना मारजी व्या। टे जख्मी डीपीओ बनू चाहवा तो मरकाबेरा में रोड से धमाके से वेन में सवार 5 कार में सवार 2 जना मारजी व्या। लाश आए टे जख्मी अस्पताल मुंतकिल। बारूदी मवाद रोड के किनारे से लगाया वो हो। सिंध खुराक खाते में अरबे रूपये की करप्शन कदड़ 5 आफिसर मुलाजमन के नौकर में निकाली। जिम्मेवार का 2.58 करोड़ 2 लाख उगाने जो भी हुक्म। केस एंटी करप्शन हवाले। फूड इंस्पेक्टर कंदकोट बलकशेर शेख। फूड सुपरवाइजर गोलाटची हबीबुल्ला आपड़ो। फूड सुपरवाइजर जोही अली असगर पवर। फूड सुपरवाइजर मजीद किरियो दीदार हुसैन मंगसी। फूड इंस्पेक्टर हाली रोड हैदराबाद मोहम्मद अली मंगसी की नौकरी में निकाली दिनी वही। खुराक खाते के सूबाई वजीर मखदूम महबूब जमान चवाद बरतरफ ऑफिसर का केस एंटी करप्शन के मोकलिया व्या। जिम्मेवार का पैसा उगाने लाय अदालतन में सिविल सूट दाखिल कया वेंदा। गोडकी वेझो जमीन के मालिकीता बिंदुन में झेड़ो एक जणो कतल। शर बरादरी के बिंदुन में जेड़ो थियण सबब गोली लगन सबब राशिद शर मारजी वो। एक जने के कतल बाद धुरन में चिकटाण वधी वही। सेवण में 4 डी अग घर ठाण लाय बैंक में पैसा वठेंदड़ गुम थियल पीरसन जो लाश हथ। गोठ नौ वाहन जो रवासी पीरसन मोहम्मद सदी खाले पुट जो लाश जहाज चौक तां मिलियो। पीरसन के वासन चवणा तो पीरसन के पैसन की लालच में अगवा बाद तशद्दुद कतल कहवा। पनवाकिल में अगवा थियल सभा कलोड़ो की बाजियाबी लाय शहर की एहतजाज रैली। सियासी समाज धुरन बेनजीर पार्क का ईद चौक में रैली कढ़ी। पनवाकिल में अगवा थियल सभा कलोड़ो ए सालेपट में अगवा थियल निंगरी प्रिया कुमारी के बाजियाब कराने जो मुतालबो। सिंध के मुख्तलिफ शहर में किथे मिट्टी जो तूफान तो किथे बरसात। बिजली बंद शिकारपुर बर्फ पासे मिट्टी के तूफान ए बरसात से बिजली बंद थी वही। मियां साहब हमीरपुर बुरड़ो में भी तेज तूफान से वसकार हो। तेज तूफान बाद में मुख्तलिफ इलाकों की बिजली बंद थी वही। उस्ता मामले में भी ककर वसी पाया मौसम खुशगवार। पिथोरो में आबादकरण पारा पानी कोट खिलाफ एहतजाज। पली मैडर में निकंदड़ सहित की शाख की पुष्टि की आबादकरण पानी कोट खिलाफ एहतजाज कर। पानी फराहम करण जो मुतालबो। मीरपुर पठोरो वेझो छोक शरीफ में आबादकरण जो पानी की कोट खिलाफ एहतजाज। जरी पानी की कोट खत्म करण जो मुतालबो। सखर की अदालत पर वाकिल में मुकाबलो जाना मारियल जहांगीर जखरन जो केस दाखिल करने जो हुक्म दे छो। सखर की अदालत एसएचओ अब्दुल शकूर लाखों समेत नव एहलकार खिलाफ एफआईआर केस दाखिल करने जो हुक्म दिनों। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सखर अला बचाओ कबूल एफआईआर दाखिल करने वाले केस की बुधनी कई। दरख्वास्त गुजार सफदर जखरानी मकतूल की न्याणी मुकदस ए वकील मुर्तजा कोराई अदालत में पेश थे। अदालत एसएचओ अब्दुल शकूर लाखो एएसआई खालिक डिनो जतोई ए पुलिस एहलकार खिलाफ केस दाखिल किया वे। पनवाकल पुलिस 16 अक्टूबर 2025 ते जहांगीर जखरानी के मुकाबले में मारण की दावा कई हुई। आई खेपरू में पीरसन पी के कतल कंदड़ बिनी पुटन खिलाफ केस दाखिल। मकतूल अहमद फौजदार के नंडे भाव खावन बख्श फौजदार खेपरू थाने ते केस दाखिल करायो। केस में जाना विवाद जवाबदार जहूर अनवर फौजदार निंड सुतल पी के कुहाड़ियों हणी कतल कयो। पीरसन के कतल जो केस दाखिल करने बावजूद पुलिस जवाबदार गिरफ्तार करने में नाकाम।
2: सोलर ए बैटरी ते डायरेक्ट हले और बाकी तमाम पखन के मुकाबले में ये जबरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ जिंदगी भर का।
3: सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड, किसान की उम्मीद, खुशहाली की नवीद।
4: नया लाइफ बॉय शैम्पू एलोवेरा और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला के साथ बनाए बाल मजबूत और वो भी बेहतर कीमत में, पूरे 50 रुपए की बचत के साथ। लाइफ बॉय शैम्पू, कुदरती मजबूती का न्यू लुक।
5: स्किन केयर के लिए दुनिया भर में खवातीन का अव्वलीन इंतखाब फाइजा ब्यूटी क्रीम। इसमें आपकी स्किन को रखे हेल्थी, खूबसूरत और जवान। फाइजा ब्यूटी क्रीम
3: सनक्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड, मजबूत तने, लंबे और सेहतमंद मुंजरों के साथ पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैदावार और झाड़ देने वाला सनक्रॉप ग्रुप का।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
6: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
7: Yeah!

0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।
2: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
3: तपोए GFM 90.4 मातली बदी निक एडो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
3: ऐ हां गोठन शहरन ऐ परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
2: बस पो हाने खणो फोन ऐ पेंजे इश्तियार लाइन लाए
3: असान जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 0331252578 6।
3: जी हां बुड़ी 331552786
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

जनाब आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दामन से। और इस प्रोग्राम में आप लोगों को व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो उनके बारे में बताया जाता है और साथ साथ आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाने की बातें की जा रही है। तो बिल्कुल आप लोगों के साथ साथ मौजूद रहते हैं, पूरे दो घंटों का आपका हमारा साथ होता है, साथ में आप भी हमें ज्वाइन करते हैं। तो बिल्कुल जी, आप हमें कैसे ज्वाइन करने वाले हैं तो जरा उससे जाने बातें यानी कि आप लोगों को तरीकेकार बताते हैं कि आप किस तरह से हमें ज्वाइन करने वाले हैं। इसी के साथ साथ आज के प्रोग्राम में जो मैं आप लोगों से सवाल पूछने वाली हूँ तो जरा वो भी आप लोगों को बता देते हैं। तो आप लोगों ने आज जो मुझे जवाब देना है यानी कि जो आज के प्रोग्राम का टॉपिक होने वाला है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आज मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि आप जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं मुझे बताइए कि कर्बला का सबसे बड़ा पैगाम क्या है। यानी कि हमें भाई सारी हिस्ट्री तो पता है, यानी कि बहुत से लोगों को पता है, बहुत से लोगों को नहीं है कि पता, लेकिन आज आप मुझे ये बताइए कि कर्बला का सबसे बड़ा पैगाम क्या है। क्या ये आप बात जानते हैं? अगर जानते हैं तो मुझे बताइए जल्दी से, अगर नहीं जानते तो भाई आपको हम बताएंगे। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपना सेल फोन उठाइए, कॉल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK, सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं या फिर फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो GLRKANA FM 88.8 हमारा पेज है जनाब। आप जैसे ही सर्च करते हैं तो आपको इजीली हमारा पेज मिल जाता है, पेज के ऊपर आइए और पेज के ऊपर आपको हमारे प्रोग्राम की पोस्ट मिल जाती है बिल्कुल लाइव, जिसे आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और शेयर कर देते हैं। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए। और यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जितनी भी समाते हैं वो जनाब बताइए कि आप भी हमारे साथ साथ हैं और प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। ओके, सो आप टॉपिक को फॉलो करेंगे। टॉपिक जो मैंने आज आप लोगों से पूछा है वो बिल्कुल ये पूछा है कि आप मुझे बता रहे हैं कि कर्बला का सबसे बड़ा पैगाम क्या है। क्या आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो मुझे जल्दी से बताइए और साथ साथ पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए, क्योंकि आप लोगों के फीडबैक्स हमारे जो प्रोग्राम में आते हैं तो हमारे प्रोग्राम की रौनक होते हैं, बिल्कुल जी हमारे प्रोग्राम की जान होते हैं। तो आइए जी हमारे प्रोग्राम को जान दीजिए। और इसके साथ साथ अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बारे में भी आप हमारे साथ शेयर कीजिए कि कौन सा प्रोडक्ट आप लगा रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट आप लगाना चाहते हैं, क्योंकि ये बातें भी अगर आप हमारे साथ शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे के साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद हैं जी, आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं। आकाश अली हमारे साथ मौजूद हैं। हाय आपी, मैं आकाश अली पीरजादो फ्रॉम मोरो से, मेरा भाई शो सुन रहा है, दिले जान पीरजादो और सारे घर वाले आपका शो सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। सबको खुश आमदीद कहा जाता है। और चाचा खाली झूनी जो हमारे साथ मौजूद, कह रहे अस्सलाम वालेकुम बेटा सिरो, हाउ आर यू, मैं ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं। कह रहे हाउ वाज योर फ्राइडे, फ्राइडे बस सही रहा। और उसके अलावा ए अंसारी हमारे साथ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सलाम टू ऑल, मैं ठीक हूँ, आप बताएं। एम अंसारी कहते हैं सिडो मेरी डी स्किन और व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स पता नहीं कब दिलाएंगी, एड़ी कड़जी गर्मी में माता ब्लैक एंड व्हाइट, अच्छा व्हाइट माता ब्लैक एंड व्हाइट थी वह आयो या शायद ही टॉप प्यादा थी वेंदस्ता फ्यूचर जी गाल कयो था। और कहते शो लिसनिंग विथ कदीर जीरो और हाजी गुलाम नबी मल्हा मुमताज मन जो थो। चलिए अगर ये मैंने कुछ थोड़ा गलत रीड कर लिया तो उसके लिए माजरत कर देते हैं। वैसे आप थोड़ा आ जाइए अपने करीबी जनरल स्टोर से, मालूम लीजिए वहां पर कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, अगर मिल रहे हैं तो मुझे बताइए ताकि हम आपको फ्री में दिलवाएं, ठीक है। मुझे नहीं पता कि फ्री में आपको दिलवा सकते या नहीं और मैं कोशिश करूंगी कि आपको दिलवा सकें, ठीक है। और चाचा खालिद कहते हैं कि अच्छा हमने टॉपिक का जवाब दिया है। ओके जी, ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और साथ साथ हमारे साथ मीरपुर खासी अब्दुल्ला महरीन के लिए अस्सलाम वालेकुम, बाजी व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है, बिल्कुल जी आप इस्तेमाल करते रहिए। अहमद अली शेर हमारे साथ मौजूद है, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ साथ दर्द दिल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसी हैं, वेलकम टू शो एंड आई मिस यू टू। चलिए पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए और साथ साथ जो है ना बताइए कि आप कौन कौन हमारे साथ मौजूद हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर टाइम हो जाता है, जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं और शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद हम जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं। तो आपने कहीं नहीं जाना, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, पूरे पूरे 3 बजे तक आपका हमारा साथ रहने वाला है। तो सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए, क्योंकि आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगा दी जाइए और खूबसूरत होते जाइए।

0: GA FM 88
1: सिंध की आवाज।
2: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ, जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास। चेहरे के दाग धब्बे, खेल महासे और बेजानपन, अब सबको कहें अलविदा। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम चेहरे की जल्द को दे नया निखार, नरमी, ताजगी और कुदरती चमक। सावली रंगत अब नहीं, सिर्फ 3 दिन में पाए साफ, निखरी और गोरी रंगत। लेकिन याद रखें, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिससे मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GFM 90.4।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: तो पोए GFM 90.4 मातली बदी निक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
4: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 0331252578 6।
4: जी हाँ 2315525786
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क. हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर जनाब सखर मोरो मीरपुर खास नटियारी सकरन मेहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो. व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो आप लोगों तक पहुँचा जा रहा है जनाब व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से. अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराना चाहते हैं, तो अगर ये जो भी चीजें आप जानना चाहते हैं तो अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो आप इस प्रोग्राम में सारी चीजें जान जाएंगे. तो जब आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, तो उसके लिए आपके पास जो नंबर आपको प्रोग्राम में बताया जाता है उसके ऊपर आप राबता करते हैं. या तो आप कॉल करते हैं या तो आप मैसेज करते हैं, उन्हें बताते हैं कि आप भी परचेज करना चाहते हैं और काइंडली आपके एरिया के अंदर जो है ना वो अवेलेबल करा दिए जाए, तो फिर जनाब आपके एरिया में अवेलेबल करा दिए जाएंगे. और इसके साथ साथ आप डायल कर रहे हैं 03-15-799-0595. इस नंबर के ऊपर रابطہ कीजिए, उन्हें बताइए कि आप अपने एरिया में अवेलेबल कराना चाहते हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स ताकि अवेलेबल हो सके. इसी के साथ साथ अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए जनाब कि अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों की खूबसूरती ना सिर्फ बढ़ती है बल्कि आपके चेहरे की खूबसूरती जो ना वो हमेशा के लिए लॉक हो जाती है. जबकि आप जैसे जानते हैं कि भाई गर्मियों का सीजन चल रहा है तो गर्मियों में ज्यादातर ऐसा होता है कि लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि हमने कौन से प्रोडक्ट का इंतखाब करना है, कौन से प्रोडक्ट हमने इस्तेमाल करने हैं. ज्यादातर ऐसा होता है कि हमें इस चीज की कंफ्यूजन ही जो है ना वो प्रोडक्ट से थोड़ा सा दूर कर देते हैं. अगर आप भी इस चीज को लेकर परेशान है कंफ्यूज होते रहते हैं तो आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आप लोगों के लिए प्रोग्राम लेकर आते हैं ताकि आप लोगों का जो माइंड सेट है ना वो जरा सेट हो जाए एक जगह पर कि आपने क्या चीज परचेज करनी है और जो चीज आपने परचेज करनी वो क्यों परचेज करनी है. तो सबसे पहली बात, जब आप व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एक नाइट क्रीम है जिसे आप रात के टाइम इस्तेमाल कर सकेंगे. और अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए जो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम को तैयार किया गया ना इतने शानदार तरीके से तैयार किया गया है जिसके अंदर एवोकाडो मौजूद है, एलोवेरा मौजूद है, मिल्क मौजूद है और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि आप लोगों की स्किन को जो है ना वो फायदा ही फायदा पहुंचाती रहे. और इसी के साथ साथ व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन जो है वो फ्रेश हो जाती है, क्लियर हो जाती है और आपकी स्किन को प्रोटेक्शन मिल जाती है उन तमाम चीजों से जो कि चीजें आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाती हैं. तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्किन जो है वो नुकसान से जरा फ्री हो और वो चीजें जो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाए वो चीजें आपके चेहरे से हट जाएं, तो आपने व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना है जो कि आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि नाइट क्रीम है जाहिर सी बात है. और इसी के साथ साथ अगर आप कोई भी अच्छा सा साबुन इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोई अच्छा सा फेस वॉश लगाना चाहते हैं, तो आपके पास व्हाइट एज ब्यूटी फेस वॉश भी मौजूद है एंड व्हाइट एज ब्यूटी सोप भी मौजूद है. तो ये तो आपके ऊपर है कि आप अब सोप लगाएंगे या फिर फेस वॉश लगाएंगे. अगर सोप की बात करें तो वो एवोकाडो, एलोवेरा और मिल्क से तैयार किया गया है. और फेस वॉश की बात करते हैं तो वो स्पेशली विटामिन सी से तैयार किया गया है. तो ये वो प्रोडक्ट हैं जो कि ना सिर्फ आपकी खूबसूरती को बढ़ाएंगे बल्कि आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी करते रहेंगे. इसी के साथ साथ अगर आप एक्नी को लेकर काफी ज्यादा परेशान है और एक्नी अगर आपकी जान नहीं छोड़ रहा, ज्यादातर ऐसा हो जाता है ना कि टीनएजर्स अगर आप लोग हमें सुन रहे हैं तो उनके चेहरे पर जो एक्नी आ जाते हैं तो वो बहुत मुश्किल से जाते हैं. ज्यादातर तो आपने बहुत सारी ऐसी चीजें ट्राई करके देखी लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आपने डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल करके देखना है. क्योंकि जब आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं तो इससे ना सिर्फ आपके चेहरे की एक्नी खत्म होते हैं बल्कि एक्नी मार्क्स हो या एक्नी किसी भी हो, ब्लैक पॉट्स हो, ये तमाम चीजें जो है ना वो कंट्रोल हो जाती है और आयुर्वेदिक फार्मूले के साथ किया गया है. ये इतना भी जब आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को खुद ही अंदाजा हो जाता है. अच्छा, गर्मियों के सीजन में अगर आप कोई अच्छा सा प्रोडक्ट लगाना चाहते हैं जो कि आप लोगों के चेहरे को ठंडक का एहसास दे, तो आपने डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल लाजमी करके देखना है. और इसे आप अकेले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने आप किसी भी प्रोडक्ट के अंदर एड करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देने वाला है. इसी के साथ साथ अगर व्हाइट एज लवली क्रीम का हम यहाँ पर जिक्र करते हैं तो व्हाइट एज लवली क्रीम आप लोगों के लिए एक फेयरनेस फार्मूला तैयार किया गया है. अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई फेयरनेस फार्मूला आप क्या चीज है, ये क्या बला है, तो आप लोगों को बताते चलें कि जब खास करके ऐसा होता है ना कि आप कोई नाइट क्रीम नहीं लगा पाते हैं, आपकी स्किन ऐसी है कि आपने कोई भी उसके ऊपर इस तरह का प्रोडक्ट नहीं लगाया है जो कि आपके चेहरे को खराब कर दे, या फिर आप डरते हैं कि हम नहीं लगा पाते, हमारी स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव है, तो उसके लिए आपके लिए जो है ना वो फेयरनेस फार्मूले तैयार किए जाते हैं. उनसे आपको ये फायदा मिलता है कि आपकी स्किन फ्रेश भी रहती है, ग्लोइंग भी रहती है, आपकी स्किन की हिफाजत भी होती रहती है. मार्केट में आप
لوگوں کو بہت اچھی اچھی فیئرنیس کریمیں مل جاتی ہیں, لیکن جب آپ وائٹ ایش لولی کریم کی جانب آتے ہیں اور وائٹ ایش لولی کریم استعمال کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس کے بارے میں پہلے ذرا جان لیں کہ کیا ایسی اس کی خاص باتیں ہیں جو کہ آپ کو استعمال کرنی چاہیے. تو وائٹ ایش لولی کریم سب سے پہلی بار ریڈینٹ الٹرا وائٹمنس کا فارمولا ہے, یعنی کہ اس کے اندر 30 وائٹمنس کے کیپسول ایڈ کیے گئے ہیں. اس کے اندر وائٹمن B3 ہے, وائٹمن ای ہے, وائٹمن سی ہے, وائٹمن ڈی ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ سنسکرین بھی ایڈ کی گئی ہے. یعنی کہ فیئرنیس کریمیں تو بھائی نارمل سی فیئرنیس کریمیں ہوتی, لیکن وائٹ ایج والوں نے جو فیئرنیس کریم تیار, انہوں نے ایکسٹرا ایک چیز بھی ایڈ کر دی اس کے اندر جو ہے نا, وہ سنسکرین ایڈ کر دی ہے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو خوبصورتی تو ملے گی ہی ملے گی, لیکن آپ کی خوبصورتی کی حفاظت بھی ہوتی رہے گی. تو وائٹ ایج لولی کریم جو کہ فیئرنیس فارمولا ہے جسے آپ کسی بھی عمر میں استعمال کر سکتے ہیں, اپنے بچوں کے اوپر اپلائی کیجیے, بوڑھوں کے اوپر, جوان لوگ ہیں, مرد حضرات, خواتین, ہر کوئی استعمال کر رہا ہے اور اپنی خوبصورتی کی حفاظت کر رہے ہیں. اگر آپ کوئی بھی جاب کرتے ہیں, کوئی کام کرتے ہیں, تو آپ جو ہے نا وہ استعمال کر سکتے ہیں ایزیلی وائٹ ایج لولی کریم, جسے آپ گرمیوں میں بھی لگا سکتے ہیں. بہت ایک زبردست پروڈکٹ تیار کیا ہے, تو ضرور آپ ٹرائی کر کے دیکھیے گا. جتنے بھی پروڈکٹ آپ استعمال کریں, چاہے آپ وائٹ ایج بیوٹی کریم لگا رہے ہیں, ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب لگا رہے ہیں, یا پھر وائٹ ایج لولی کریم لگا رہے ہیں, تو انہیں لگانے سے پہلے اپنا فیس واش آپ لازمی کیجیے گا, ٹھیک ہے؟ فیس واش کیجیے, اس کے بعد آپ اپلائی کیجیے تاکہ آپ لوگوں کی خوبصورتی جو ہے وہ آپ کو ملے اور آپ ہمیشہ کے لیے اپنی خوبصورتی کی حفاظت بھی کرتے رہے. اسی کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام میں نے آپ لوگوں سے سوال پوچھا ہے کہ آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ کربلا کا سب سے بڑا پیغام کیا ہے. یعنی کربلا کا واقعہ تو ہر کوئی جانتا ہے, ہر کسی کو پتا ہے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ کربلا کا جو ہے نا وہ سب سے بڑا پیغام کیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, جڑنا چاہتے ہیں, آپ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ہمیں 888 اور فیس بک پر جوائن کرتے جا رہے ہیں. فیس بک والے جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں, پوسٹ کو کائنڈلی لائک اور شیئر کر دیا کریں.

0: ओके जी, फहीम शेख क्या कहते हैं,
1: ये तेरा काम है परवरदिगार,
0: बादल के आगे जुरत इनकार ना होगा, वाज़े है कि वो साहिब किरदार ना होगा। तफ़हीम इश्क जिसने भी समझा हुसैन अलैहिस्सलाम से, जीने का कभी भी वो तलबगार ना होगा। क्या बात है जी, जबरदस्त। और किशोर भाई कहते हैं, सलाम अदा खुश आयो, बस हाजिरी कबूल करें। जी जी बिल्कुल, आपकी हाजिरी कबूल करें। और आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? दर्द दिल कहते हैं कि हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपनी खुशियों को संभाल कर रखो, क्योंकि हर नेमत हर नजर को बर्दाश्त नहीं करती, और शुक्र और आजजी नेमतों की हिफाजत का बेहतरीन जरिया है। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। आजकल हम जैसे अपनी खुशियों की जो ना नुमाइश कर रहे होते हैं, तो ये सही बात नहीं होती। जितना आप चीजों को हाइड रखेंगे, उतना आप जिंदगी में खुश रहेंगे।

ओके जी, पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और साथ साथ हजार खान जतोई भाई हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम, ठीक है प्यारा भाई, आ की आयो कहते कि जी हम भी आपके साथ साथ हैं। थैंक यू सो मच, आप भी हमारे साथ साथ मौजूद हैं प्यारे भाई जान।

रवि जी क्या बात है, और साथ साथ जो है ना आप हमारे साथ मौजूद हैं और आप लोगों को ये बताते जा रहे हैं जनाब, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का या फिर आप इस्तेमाल करें डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, जो कि मैं आप लोगों को दूसरे घंटे में आऊंगी तो बताऊंगी कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का क्या ऐसा कमाल है जो कि आप लोगों को मिलने वाला है, तो अगर आप वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो बिल्कुल जरूर कीजिए, और वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए और डायल करती रहिए 03 1579 0595। ये नंबर आप डायल कीजिए, अपने एरिया में अवेलेबल कराइए, वहां से जाकर बस आनी परचेज करते जाइए और इसी के साथ साथ इस्तेमाल करते रहिए वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जो कि आपके खूबसूरती की जमानत है। इसी के साथ साथ टाइम हुआ चाहते हैं जरा हम न्यूज ब्रेक की जानब जाते हैं, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले हैं तो वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहना है, प्रोग्राम ही हमारे साथ साथ रहिए पूरी पूरी 3 बजे तक, और सुनते रहिए वाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट एंटी स्किन ब्यूटी products.

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: को ईरान साइट में मामलन थे गार्डन लाइफ स्विट्जरलैंड पहुंचो है ईरानी वफद स्विट्जरलैंड पहुंचन दो जंगबंदी के ऐलान बावजूद इसराइल जा लबनान ते फिजाई हमला जारी पंज शहरी शहीद केतरा जख्मी लबनानी अख्तियार मूजिब इसराइली जंगी जहाजन ड्रोन्स नबतिया के इलाकन में आबादियों के निशानों बनाया इसराइली फौज पारा इमारतों से बमबारी जो सिलसिलो वक्फे वक्फे से जारी है नायब वजीर आजम इसहाक डार मिस्र रवानो चैन मुल्की परडेही वजीर के इजलास में शिरकत कंदो कायरा में थींदड़ चैन मुल्की इजलास में सऊदी अरब तुर्किया मिस्र जा परडेही वजीर शिरकत कंदा इजलास में खिते सूरत हाल ईरान अमरीका मामलों की अगबराई जो जायजो वरतो वेंदो असांजी कोशिशन रंग लातो आहे खिते मां जंग खत्म थी आहे पाकिस्तान अमरीका ईरान के गालन की मेज से विहारियो पाकिस्तान जंग रोकण में अहम किरदार अदा कयो वजीर आजम फील्ड मार्शल हाउस अवाम के वादायूं पेश कयां थो कौमी असेंबली में बजट के सेट थींदे नाणे वारे वजीर मोहम्मद औरंगजेब चयवा आदि सुधारा कया आहिनि नंढन आबाद करण हारन के बिना व्याज कर्ज डिना आहिनि आलमी मार्केट में तेल सस्तो थियण जो तकड़ो रिलीफ बि अवाम खे ॾिनो आहे सिंध असेंबली में बजट से बहस जारी अपोजिशन मेंबर के बजट से तनकीद अरड़ सालों का मौजूद मसला हल न थियण जो दाहूं एमक्यूएम एमपीए फहीम पटनी अरड़ तरमीम से सूबे में अमल न थियण सबब मसला सूबो वफाक का पैसा वी विरासत न थो करे पीपीएमपीए नूर मोहम्मद बुरगड़ी चो चोर दरवाजे का नायू आया बोड सबब मुझी तकड़ी जहां मुतासर थे गर्भ पानी लाइ परेशान आन पंजाब पारा रोकियल पानी वी खोट खत्म कई वे केपी के इलाके बनू में वेन ए कार रोड से लगायल बारूदी मवाद से टकराए इमदादी कार्रवाई समेत सत जना मारजी पाया टे जख्मी डीपीओ बनू चाहे तो मरकाबेरा में रोड पर संध माके सब वेन में सवार पंज कार में सवार बलिना मारजी पाया लाश ए टे जख्मी अस्पताल मुंतकल बारूदी मवाद रोड के किनारे से लगाया वो हो सिंध के खुराक खाते में अरबे रूपये की करप्शन कदड़ पंजन ऑफिसर मुलाजमन के नौकरियों में निकाली जिम्मेवार अरब पंजाठ करोड़ बाहठ लख उगाण जो हुक्म केस एंटी करप्शन हवाले फूड इंस्पेक्टर कनकोट बलकशेर शेख फूड सुपरवाइजर गुलाटी हबीबुल्ला अबड़ो फूड सुपरवाइजर जोही अली असगर पंवर फूड सुपरवाइजर मजीद किरियो दीदार हुसैन मंगसी फूड इंस्पेक्टर हाली रोड हैदराबाद मोहम्मद अली मंगसी की नौकरी में निकाली डी वही खुराक खाते के सूबाई वजीर मखदूम महबूब जमान चवा बरतरफ ऑफिसर जहा केस एंटी करप्शन के मोकलिया वह जिम्मेवार पैसा उगाने लदालतन में सिविल सूट दाखिल किया।

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज.
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM 90.4.

जल्दी से इस नंबर के ऊपर रब्ता कीजिए और अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते जाइए और उन्हें बताइए कि आपके एरिया में नहीं मिल रहे हैं ये प्रोडक्ट्स। और इसी के साथ साथ मैंने पहले आप लोगों को व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। सो फिलहाल अभी जो है ना आप लोगों को मैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताने वाली हूँ। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, लेकिन साथ साथ जिन लोगों ने हमें अभी अभी सुनना स्टार्ट किया है तो उनको वेलकम एंड खुशामदीद कहते हैं। और साथ ही साथ आज जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा है तो जरा वो भी रिपीट करवाते हैं। तो आज के प्रोग्राम में जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा वो बिल्कुल ये पूछा है कि आप मुझे बताएं कि करबला का सबसे बड़ा पैगाम क्या है। करबला का वाकया तो आप जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि करबला का सबसे बड़ा पैगाम क्या है? आप लोगों तक वो पैगाम पहुंचा है या नहीं पहुंचा, आप मुझे ये बताइए जल्दी से। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं और शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं तो जल्दी से आप हमें ज्वाइन कीजिए 888 और फेसबुक पर। ओके जी, आप पोस्ट को लाइक और शेयर करते जा रहे हैं और साथ ही साथ अपने होने का एहसास दिलाते जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम आप लोगों के साथ साथ यहाँ पर बात करते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में जाना भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका इस्तेमाल आप क्यों कर रहे हैं। तो अक्सर मैं ये बात आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो आपको पता होना चाहिए उस प्रोडक्ट के बारे में कि आप उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ पर डी स्किन क्रीम के बारे में बात करते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इतनी जबरदस्त तरीके से तैयार की गई है, जिसके अंदर विटामिन ई बीट्स मौजूद है एंड माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन से तैयार की गई है और ऑल स्किन टाइप के लिए है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को पता है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक नाइट क्रीम है, सिर्फ दो दिनों में वाज़ह नतायज के लिए डी स्किन वाइटनिंग क्रीम का आप जो ना इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि जदीद अज्जा जैसे अल्फा आर्बोटीन, कोजिक एसिड, ग्लूटाथायोन से भरपूर है ये क्रीम। अगर आप रात भर इस्तेमाल करते हैं तो रात भर ये क्रीम आपके चेहरे पर ऐसा असर करती है कि आप लोग खुद ही कहते हैं कि भाई वाकई इस क्रीम जेका वो मजेदार है। इन खां अलावा तव्हांजी जल्दी जेका वो चमकदार थी वेंदी ऐं तव्हांजी चेहरे ते जेका डलनेस आई उहा खत्म थी वेंदी, तव्हांजी चेहरे जी जेका स्किन है ना उहा ग्लो जी तरफ़ ईंदी। अगर तव्हां बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो पिया त तव्हांखे ख़बर हुजे त हीअ जेका क्रीम तयार कई वई आहे हिन जे अंदरि सभु चीज़ूं उहे आहिनि जेके तव्हांजी स्किन जे लाइ फ़ाइदो पहुचाईंदी तव्हांखे, ऐं तव्हांखे इहा ख़बर हुजे त जॾहिं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कंदा तो तव्हांखे ॿिन रातिन जे इस्तेमाल सफ़ा जबरदस्त रिज़ल्ट मिले थो। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका हर हिकु माण्हू जे लाइ तयार कई वई आहे, मर्द हज़रात आयो, ख़वातीन आयो, हर कोई इस्तेमाल करे सघे थो। ओके जी, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे, सोने से पहले लगाइएगा, लेकिन सोने से पहले जरा अपना फेस वॉश भी कीजिएगा। और फेस वॉश की बात आती है तो डी स्किन फेस वॉश आप लोगों के लिए अवेलेबल है मार्केट में। जब आप डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि डी स्किन फेस वॉश जो है जो कि हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है, इसका मतलब ये होता है कि जब आप डी स्किन का फेस वॉश अपने चेहरे पर अप्लाई करेंगे ना तो उससे आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेट रहती है, आपकी स्किन जो है वो क्लीन रहती है और साथ साथ आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहती है और आपके चेहरे की स्किन ग्लो की तरफ आती जाती है। आप लोगों की स्किन अगर मुरझा सी गई है, आपके चेहरे की स्किन मर रही है, तो उसे जिंदा रखने के लिए आपने जो है ना वो डी स्किन फेस वॉश का यूज करना है एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना है। कई मरतबा ये चीज हो जाती है कि हम जैसे ही अपनी उम्र के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां पर आप लोगों की स्किन को ज्यादा जरूरत होती है प्रोडक्ट की, ऐसा होता है बहुत से लोगों को ना मैंने देखा है जो कि भाई कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ऐसा आपकी जिंदगी में एक मोड आता है जब आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ जाती है, यानी कि आपके चेहरे पर जो ब्लैक हेड्स हैं वो बढ़ जाते हैं, या फिर आपके चेहरे पर आंखों के हल्के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, या फिर आपके चेहरे की स्किन जो है वो झुर्रियों की जानिब चली जाती है, आपके चेहरे पर जो है ना वो काफी काले काले निशान पड़ जाते हैं। तो इन तमाम चीजों को कंट्रोल करने के लिए आपको जो है ना वो एक अच्छा सा प्रोडक्ट होना चाहिए, एक अच्छा सा क्रीम होना चाहिए, उसके लिए आपके पास डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप जरूर ट्राई कीजिएगा, साथ में आपने डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल करना है, जो कि दोनों चीजें आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने वाली है। तो लाजमी आप ट्राई करके देखिएगा और साथ साथ अगर आपके एरिया में नहीं मिल रहे तो डायल कीजिए 03-15-799-0595।

ओके जी, पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद है, हमें बताते जाइए। और ये हमारे साथ हैं जी, आज भी जब नामे हुसैन लबों पर आता है दिल अदब से झुक जाता है और आंखें नम हो जाती हैं। इमरान अली बिरोही लाड़काना से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। और प्रिंस अहमद अली रिंद हमारे साथ हैं फ्रॉम अहमद अब्बास, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, सलाम पाक आर्मी, स्वीट शो प्लीज प्ले मेरी झोली भर दे, चलें ये आपकी फरमाइश लगाते हैं, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। और शोनी कहती हैं आप ही जान में भी आ गई, सॉरी आप ही, मैं कुछ दिनों से शो को ज्वाइन नहीं कर पा रही थी, आप ही, मैं बहुत बिजी थी इस वजह से मैं नहीं आई। चलें कोई बात नहीं शोनी, अब आप आ चुकी हैं तो आपको खुश आमदीद कहा जाता है। और ये सजाद अली जमाली हमारे साथ ही नवाब शाह से कहते हैं आपको भी खुश आमदीद भाई जान। इरम कहती है सिजानी, जी इंशाल्लाह मैंने उम्मीद तो करी है, अल्लाह पाक नसीब करेंगे।

लोगों के लिए दर्द दिल कहती है कि टॉपिक चंदा वाकिया करबला हमें सबर वफादारी और दीन इस्लाम की खातिर कुर्बानी का दर्ज देता है। ओके जी। और गुलाम रहीम बलोच हमारे साथ कहते हैं सलाम जबरदस्त प्रोग्राम थर पार्कर से वफा। गुलाम रहीम बलोच हमारे साथ मौजूद है, वेलकम करते हैं भाई को। और वफा वहीद हमारे साथ ही, वालेकुम असलम सिदरा जी, आप कैसी है? माशाल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम। राम जेकब आबासी, आप हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू। फहीम आपका कसीदा लगाते हैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। वरियाम कहते हैं कि सिदरा इस प्यारे शो में हमारा दिल से सलाम हो आपको, आपको भी वेलकम एंड वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। और गुल मोहम्मद रिंद भाई हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाईजान, ठीक ठाक हैं? अच्छा चाचा खालिद कहते हैं हमारी उम्र के हिस्से में कौन सी क्रीम इज बेटर, डी स्किन या वाइट एज? तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को पता चलता है कि वाकई आप कितना अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइएगा और साथ में डी स्किन फेस वॉश भी आप ट्राई करके देखिएगा, ठीक है चाचा।

अच्छा नन चाचा तुम टेंशन के तुम उम्र न था पुछू उम्र पुछण वैसे मुझे कम भी ना हों वो मानू है जो पांजे कम से कम रख है। अच्छा गुल मोहम्मद रिंद भास से गड मौजूद आयन कहते हैं ये दुनिया तुम्हें क्या देगी मोहसिन जिसने इमाम हुसैन अलैहि सलाम को पानी तक ना दिया। हाँ भाई सही गाल है। किशोर भाई कहते हैं कि अदी शुक्र करण ते अवां जेको समझायो इलाही सुठो लगो मुखे मुझी गाल ते अवां जो समझायण वणंदो आ इलाही जो पंहिंजो पाण फील थींदो आहे पाण। हाँ ये हकीकत आहे वैसे अगर ॾिठो वञे न त इलाही चीज़ूं हूंदियूं आहिनि जेके मूंखे तव्हां सां शेयर करणियूं हूंदियूं आहिनि पर कॾहिं वक़्तु न आहे मिलंदो वरी कॾहिं अहिड़ो मौको न आयो हूंदो जो उन्हनि ॻाल्हियुनि खे तव्हां ताईं पहुचायो वञे। त अगरि कुझु ॻाल्हियूं तव्हां करे वठंदा आहियो त पोइ असांजी बि दिलि चवंदी आहे तव्हां सां कुझु ॻाल्हियूं करे वठूं ऐं उहे ॻाल्हियूं कुझु शायदि तव्हांजे बहितरी लाइ हुजनि। ऐं वरी जॾहिं तव्हां जहिड़ा प्यारा माण्हू असां सां गॾु मौजूद हूंदा आहिनि जेके सम्झंदा आहिनि चीज़ुनि खे उन्हनि खे ख़बर हूंदी आहे त असां जेको कयूं पिया या जेको कुझु थिए पियो उहो सभु पॉज़िटिव तरीक़े सां वठंदा आहियो त पोइ अञा वधीक सुठो लॻंदो आहे। अच्छा सो तव्हां बि पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कयो जिन माण्हुनि अञा ताईं कोन कयो आहे चौपे खे तव्हां फॉलो कयो था। गुल मोहम्मद रिंद भा चले मैं कोशिश करती हूँ। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं और साथ साथ यहाँ पर टाइम हो जाता है जरा हम जो है ना वो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं उसके बाद हम जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं। आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा हम आपके साथ मौजूद रहेंगे पूरी पूरी 3 बजे तक। सुनते रहिए प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।

0: FM88
1: सिंध की आवाज।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: ॾाढो सुठो
2: जीए FM88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज। खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद वाइटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ ॿिनि ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो जी FM 90.4।

अजीब बजू किसी माझ लगी मेरे घने अखू यार अजीब बजू किसी माझ लगी मेरे घने मुझे माना निशान मारो मुर्गी महबूबन मारो मुर्गी माशूबन।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GAFM 88 नेटवर्क ते।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

ओके जी, सर वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास, और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सखर, मोरो, मीरपुर खास, मटियारी, सकरन, मेहरापुर, माथली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंडी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंडी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, खूबसूरतियाँ हासिल करते जा रहे हैं और खूबसूरत होते जा रहे हैं, क्योंकि आपकी स्किन को जरूरत है जनाब व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो। अक्सर जब आप अपनी खूबसूरती को निखारने की जरा तैयारी करते हैं ना, तो तैयारी करते साथ ही ये चीज आप अपने जहन में रखा करें कि जब आप मार्केट जाएं अपने लिए प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, तो आप लोग ये चीज समझ लें कि आपने जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, जो भी प्रोडक्ट परचेज करना है, तो वो प्रोडक्ट सबसे पहली बात आपके स्किन के मुताबिक तैयार किया हो, और सबसे अच्छी बात कि वो जो है ना ऑल स्किन टाइप के हिसाब से हो। ऐसा होता है कि जब आप मार्केट जाते हैं आप लोगों को समझ नहीं आती बात, और आप लोग जो ना बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इस मामले में कि हमने कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है, कौन सा लेना है, ये वाला सही रहेगा या वो वाला सही रहेगा। तो इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में जो है ना, आप इन चीजों को जरा साइड पर रख देते कि भाई और बहुत सारे काम है हमें, तो इन चीजों को जरा साइड पर रखिए। तो मैं आप लोगों की जिंदगी को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, आप लोगों को ये समझाने के लिए कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, तो उसके इस्तेमाल से पहले कुछ ऐसी बातें जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। तो बिल्कुल ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत आप लोगों की मदद हो जा रही है, और साथ साथ आप जान सकते हैं कि आप लोगों की स्किन के मुताबिक जो प्रोडक्ट तैयार किए गए हैं वो आप लोगों तक पहुंचाने कितनी ज्यादा जरूरी है। तो जब आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि जनाब व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, और हर तरह का प्रोडक्ट मौजूद है, और उसके साथ साथ डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट भी आपके लिए अवेलेबल है। जब आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम में आप लोगों के लिए जो है ना वो हर एक चीज ऐड की गई है जो कि आप लोगों की स्किन की हिफाजत करने के लिए है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल कीजिए, और साथ में डी स्किन फेस वॉश आपके लिए मौजूद है जो कि आप बिल्कुल लगाएंगे, और डी स्किन का फेस वॉश आप अप्लाई कर सकते हैं 2 से 3 मरतबा आपने स्किन के ऊपर दिन में और रात में। और उसके अलावा अगर आप क्रीम लगाना चाहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम, तो इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे, और साथ साथ अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसमें आप लोगों के लिए नाइट क्रीम है, फेयरनेस क्रीम है, एक्नी ट्यूब है, सोप है, फेस वॉश है, तो इतने सारे प्रोडक्ट हैं जो भी आप लगाना चाहते हैं। बस आप अपनी टाइप वाला प्रोडक्ट चूज कीजिए और परचेज कीजिए और फिर इस्तेमाल कीजिए। कोई सेंसिटिव जो है ना स्किन वाले प्रोडक्ट जो है वो नहीं, ऐसा नहीं कि भाई अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप इस्तेमाल कर सकते नहीं कर सकते, बिल्कुल जी कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हो, ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, हर तरह की स्किन के लिए मॉइस्चर है जनाब, आप लाजमी लगाइएगा, आपको बहुत ही अच्छे वाले रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी के साथ साथ हम आ चुके हैं प्रोग्राम के लास्ट लिंक में, तो जिन लोगों ने अभी अभी सुना है स्टार्ट किया या फिर जो स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है, सबको वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। और इसी के साथ साथ जो है ना मैं पता नहीं क्या कह रही थी।

ओके जी, पोस्ट को लाइक और शेयर करें और इसी के साथ साथ जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं उन तमाम लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। ओके जी, सो आप लोग क्या कह रहे हैं, आप लोगों की बातें जो हैं वो सुनना और जानना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो जी पैनल पर आते हैं तो आगे मैसेजेस हैं।

ओके जी, इमरान अली बिरोही हमारे साथ ही लाड़काना से लिखते हैं कि खून से चिराग दीन ने इस्लाम जलाया हुसैन ने, रस्म वफा को खूब निभाया हुसैन ने, खुद को तो एक बूंद भी पानी ना मिल सके मगर करबला को खून पिलाया हुसैन ने, ऐसी नमाज कौन पढ़ेगा जहां में, सजदा किया तो सरना उठाया हुसैन ने, सबरे हुसैन को मेरा सलाम। इमरान भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। ओके जी सोनी, ठीक है ठीक है। अच्छा सरदार हाजी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं ठीक हूँ भाई जान, कहते हैं दुनिया जी ना ही परवाह, सिस्टर तवां दे खेर हुजे, भा तवां जो मोहब्बतूं आइन। अच्छा गुल मोहम्मद रिंद भाई जान लिखते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सबर कर वफादारी का दर्स दिया है और उसने हमेशा ये बताया है कि कभी भी जालिम के सामने अपना सर मत झुकाना, सर हमेशा खुदा के सामने झुकाना, करबला में हमेशा वफादारी का दर्स दिया है और सबर का भी। चलें जी बहुत बढ़िया। और ये हजार खान जतोई भाई हमारे साथ कहते हैं करबला का सबसे बड़ा पैगाम हक और बातिल के दरमियान फर्क, कुर्बानी, सबर और जुल्म के खड़े होना, ये हमें सिखाता है कि सच्चाई और इंसाफ के लिए किसी भी मुश्किल का सामना करना चाहिए, चाहे उसके लिए कितनी ही बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। योर टॉपिक आंसर, ओके वेरी नाइस। अच्छा ए मंसारी कहते हैं सिडो बेसिकली देखा जाए तो हम नाम के इसके ऊपर ना मेरी भी यही सोच है कि हम नाम के मुसलमान रह चुके हैं, हमारा वो जो यानी हमें जिस तरह अपना जिंदगी अपनानी चाहिए, जिस तरह हमें काम करनी चाहिए, जिस तरह से हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, वो चीजें तो हम करते हैं नहीं, बस मुझे यही लगता है वाकई कि हम नाम के मुसलमान रह चुके हैं, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, ये चीज भी हमारे सामने आ जाती है कि हमने कोशिश करनी है और हम जो है ना वो थोड़े थोड़े से यानी कि थोड़ा थोड़ा करके अपनी जिंदगी के अंदर वो तमाम चीजें एड करें जिन चीजों का हमें हुक्म दिया गया है। तो बस थोड़ा थोड़ा करके आप जरा अपनी जिंदगी को जो है ना वो आसान बनाने की कोशिश करें, अल्लाह पाक बाकी मदद करने वाले हैं। और चाचा खालिद कहते हैं कि और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, एग्जैक्टली बहुत कुछ है दुनिया में। और फहीम कहते हैं कि वो अपने बाप का दादा ओके ये जी थोड़ा सा हम जरा ऐसे स्किप करेंगे। और फहीम बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। और चाचा खालिद कहते हैं वो उमर के बारे में जस्ट किडिंग, वो तो ईद शो में आप दोनों ने मजाक किया था, इट्स ओके मैं बड़े दिल वाला हूँ, सो चलें कोई बात नहीं, वैसे वो मजाक जो है ना उसको मजाक के हद तक ही रखा करें, बाकी सब बहुत अच्छा है, अपना ख्याल रखिये और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लाजमी लगाइएगा। वैसे कल 5 तारीख होगी 5 मुहर्रम की, तो मैं कल आऊंगी और कल जो होगा मेरा मतलब ऐसा समझ लें कि लास्ट डे होगा, उसके बाद जो है ना वो हम 11 या 12 तारीख के ऊपर जो है ना दोबारा से आप लोगों को ज्वाइन करेंगे।

0: अच्छा आज की मतलब प्रोग्राम में जिन लोगों ने हमारी पोस्ट को लाइक नहीं किया है ना, तो जल्दी से कर दें, क्योंकि मुझे जो है ना वो आज के प्रोग्राम में लाइक्स थोड़े कम नजर आ रहे हैं। तो मुझे जो है ना मतलब एक होता है ना कि ऑब्सेशन होती है कि भाई एक इंसान की, तो मुझे ये लगता है कि मेरे प्रोग्राम में लाइक्स जो है ना वो बहुत ज्यादा दिखने चाहिए। तो लाइक्स जो है ना वो कर दें जिन लोगों ने नहीं किया। और साथ साथ जो है मैं आज जिन लोगों की जरा फरमाइशें स्किप करूंगी तो उसके लिए माजरत कर देते हैं। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी जो है ना मुलाकात कल वाले प्रोग्राम में तो होगी, तो जिनकी फरमाइशें रह जा रही है तो वो कल आकर मैं लगा लूंगी। और साथ साथ आपको ये जरूर मैं कहती हूँ जनाब कि आप इस्तेमाल किया करें जो भी प्रोडक्ट आपको मैं बताती हूँ, और वो जो प्रोडक्ट मैं आपको बताती हूँ वो आपकी स्किन के मुताबिक होते हैं। उनके अंदर ऐसा कोई सीन नहीं होता कि भाई आप लगाएं तो आप लोगों को नुकसान पहुंचेगा। मैं ये हरगिज नहीं चाहूंगी, क्योंकि वो जो भी मैं आप लोगों के लिए प्रोडक्ट लेकर आती हूँ तो वो आप लोगों की स्किन के मुताबिक होते हैं, आप लोगों को जो ना अच्छे वाले रिजल्ट देने के लिए होते हैं। तो जब भी आप इस्तेमाल करें वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, तो इनके जितने भी यानी कि ऐसी चीजें हैं जिनके जो इनके अंदर एड की गई है, तो वो आपकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए है। और आप लोगों के लिए सबसे बड़ी बात, जैसे कि भाई मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए हर तरह के प्रोडक्ट मौजूद है। यानी कि अगर आप नाइट क्रीम नहीं लगा पाते हैं तो आप फेयरनेस क्रीम लगाएंगे, एक्नी प्रॉब्लम आपको आ चुकी है तो आप डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्नी ट्यूब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके लिए सोप मौजूद है, आपके लिए फेस वॉश मौजूद है, हर तरह का प्रोडक्ट आपके लिए अवेलेबल है। तो आप जो भी अपने स्किन के ऊपर सूट करने वाला प्रोडक्ट यानी कि जो भी प्रोडक्ट आप लगाना चाहते हैं उसे आप लगाइए, और जो है ना फिर मुझे बताइए कि आपको रिजल्ट्स कैसे मिलते जा रहे हैं। और उसके अलावा
1: ये फूल कलियां ये चांद तारे,
0: ये जी हमारे प्रोग्राम का लास्ट कसीदा हमने लिस्ट में लगा लिया है, इसके साथ आप लोगों से हम इजाजत भी लेंगे। ज्यादा से ज्यादा आपको कहकर जाऊंगी कि आप जरूर डायल कीजिएगा 03-15-799-0595, ये नंबर डायल कीजिए ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल करा सकें, और उसके बाद आप जो है ना इजीली जाकर परचेज कर सकें। तो आप नंबर जरूर डायल कीजिएगा। इसी के साथ इंशाल्लाह आप लोगों से जो है ना मुलाकात मेरी कल वाले प्रोग्राम में होने वाली है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, कहीं पर कोई गलती हो गई तो मैं माजरत ख्वाह हूँ, जिनके फीडबैक रह चुके हैं, जिनकी फरमाइश रह चुकी है, सभी से माजरत करते हैं। किथे मुंह को अड़ो लफ्ज़ गाले जो जेको तमाम की सुठो न लगे उन लाइ भी माजरत कयूं था। सो मोकलानी ना ही बाबू सिन सलामत सा सलामत अल्लाह हाफिज़ बाय बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: वफाकी घरू वज़ीर मोहसिन नकवी भेरो ॿीहर ईरान जे दौरे ते मशहद पहुची वियो। ईरानी मीडिया मूजिबि घरू वज़ीर मोहसिन नकवी ईरानी क़यादत सां मुलाक़ात कंदो। मोहसिन नकवी ईरानी क़यादत खे अमरीका ऐं ईरान में तय थियल मुआदे ते मुबारक ॾियण सां गॾु ॻाल्हियुनि जे ईंदड़ मरहले बाबति मुशावरत कंदो। ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास चिराग़ची जी अॼु स्विट्ज़रलैंड जे दौरे जा इम्कान। अमरीकी ख़सूसी नुमाइंदो स्टीव विटकॉफ स्विट्ज़रलैंड पहुतल। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट मूजिबि स्टीव विटकॉफ ईरान सां एटमी मामलनि ते ॻाल्हियुनि लाइ स्विट्ज़रलैंड पहुतो आहे। ईरानी वफ़द बि स्विट्ज़रलैंड पहुचंदो। जंगबंदी जे ऐलान बावजूद इसराइल जा लबनान ते फिज़ाई हमला जारी। पंज शहरी शहीद, केतिराई ज़ख़्मी। लबनानी अख़्तियारनि मूजिबि इसराइली जंगी जहाज़नि ऐं ड्रोन्स नबतिया जे इलाक़नि में आबादीनि खे निशानो बणायो। इसराइली फ़ौज पारां इमारतनि ते बमबारी जो सिलसिलो वक़्फ़े सां जारी आहे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार मिस्र रवानो। चइनि मुल्की परडेही वज़ीरनि जे इजलास में शिरकत कंदो। कायरा में थींदड़ चार मुल्की इजलास में सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र जा परडेही वज़ीर शिरकत कंदा। इजलास में खिते सूरतहाल ऐं ईरान अमरीका मामलनि ते अगभराई जो जाइज़ो वरितो वेंदो। चार सौ सत खरब एकेतालीह अरब पंजवंजाह किरोड़ खां वधीक जा लाज़मी ख़र्चनि जा तफ़सील क़ौमी असेंबली में पेश। मुल्की कर्ज़नि ते व्याज ॾियण लाइ उणहतरि खरब ॿियासी अरब खां वधीक रक़म रखी वई। रिपोर्ट मूजिबि मुल्की कर्ज़ ॾियण लाइ ॿ सौ उणहठि खरब ॿियानवे अरब वीह करोड़ रुपया रखिया विया। मुल्की कर्ज़नि ते व्याज ॾियण लाइ उणहतरि खरब ॿियासी अरब खां वधीक रक़म रखी वई। परडेही कर्ज़नि जी वापसीअ लाइ अठवंजाह खरब छटीह अरब खां वधीक रक़म रखी वई। परडेही कर्ज़नि ते व्याज ॾियण लाइ ॾह खरब एकेतालीह अरब उणेतालीह करोड़ रुपया रखिया विया। सुप्रीम कोर्ट लाइ सत अरब चोएतालीह करोड़ रखिया विया। वफ़ाक़ी आइनी अदालत लाइ छह अरब चार किरोड़ खां वधीक रक़म रखी वई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट लाइ ॿ अरब छटीह किरोड़, मुख़्तस क़ौमी असेंबली लाइ सत अरब छहानवे किरोड़ ऐं सेनेट लाइ छह अरब ॿाएतालीह किरोड़ रखिया विया। सदर जे पर्सनल ऑफिस जे मुलाज़मनि जे अलाउंस लाइ हिकु अरब टियासी किरोड़ रुपया मुख़्तस। बजेट में पघारदार तबिके ते ॿार विझण बदिरां टैक्स उगाड़ी खे बहितर करे रहिया आहियूं। टैक्स ॾींदड़ ऐं उगाड़ी कंदड़ ऑफिसर विच में तालुक जे ख़ात्मे लाइ फिसले सिस्टम आणे रहिया आहियूं। क़ौमी असेंबली में बजेट ते बहस खे सेड़ींदे नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त असांजी कोशिशुनि रंग लाथो आहे। खिते मां जंग ख़तम थी आहे। पाकिस्तान अमरीका ईरान खे ॻाल्हियुनि जे मेज़ ते विहारियो। पाकिस्तान जंग रोकण में अहम किरदार अदा कयो। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल ऐं अवाम खे वाधायूं पेश कयां थो। सिंध असेंबली में बजट ते बहस जारी। अपोजिशन मेंबर जी बजट ते तनक़ीद। अरिड़हनि सालनि खां मौजूद मसला हल न थियण जूं दाहूं। एमपीए फहीम पटनी चयो त अरिड़हीं तरमीम ते सूबे में अमल न थियण सबबि मसला आहिनि। सूबो वफ़ाक़ खां पैसा वठी विरासत नथो करे। पीपीएमपीए नूर मोहम्मद बुरगड़ी चयो त चोर दरवाज़े खां नाहियूं आया। बोर्ड सबबि मुंहिंजी तक जा मुतासिर थियल स्कूल ठाहे ॾिना वञनि। आबादगार बि पाणी लाइ परेशान आहिनि। पंजाब पारां रोकियल पाणी वठी खोट ख़तम कई वञे। केपी जे इलाके बनू में वेन ऐं कार रोड ते लॻायल बारूदी मवाद सां टकराइजी वियूं। ॿिन इमदादी कारकुननि समेत सत ॼणा मारिजी विया, टे ज़ख़्मी। डीपीओ बनू चयो आहे त अमरक बेरा में रोड भरिसां धमाके सबबि वेन में सवार पंज ऐं कार में सवार ॿ ॼणा मारिजी विया, लाश ऐं टे ज़ख़्मी। अस्पताल मुंतकिल बारूदी मवाद रोड जे किनारे सां लॻायो वियो। सिंध जे खुराक खाते में अरबे रूपियनि जी करप्शन कंदड़ पंज ऑफिसरनि मुलाज़मनि खे नौकरियुनि मां निकाली। ज़िमेवारनि खां ॿ अरब पंजाहठि करोड़ ॿाहठि लख खां वधीक उगाइण जो बि हुकुम। केस एंटी करप्शन हवाले। फूड इंस्पेक्टर कनकोट बलकशेर शेख, फूड सुपरवाइज़र गुलाटी हबीबुल्ला अबड़ो, फूड सुपरवाइज़र जोही अली असगर पंवर, फूड सुपरवाइज़र मजीद कीरियो, दीदार हुसैन मंसी, फूड इंस्पेक्टर हाली रोड हैदराबाद मोहम्मद अली मंसी खे नौकरीअ मां निकाली ॾिनी वई। खुराक खाते जे सूबाई वज़ीर मखदूम महबूबु ज़मान चयो आहे त बरतरफ़ ऑफिसरनि जा केस एंटी करप्शन खे मोकिलिया विया आहिनि। ज़िमेवारनि खां पैसा उगाइण लाइ अदालतनि में सिविल सूट दाखिल कया वेंदा।
1: I start by brain dumping everything I need to get done in a list view. Next, I set a priority and a due date to keep things on track. I create custom statuses to organize my progress exactly how I want.
2: Aap sun rahe the GAFM Network par KTN News. हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: छावां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
4: ऐं हां गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 0331252576।
4: जी हां 2315525786
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन 5H ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: pressed into a safe theater.
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज,
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: पाक की गुरु वजीर मोहसिन नकवी एक बेरो बीहर ईरान के दौरे से मस्जिद पहुंची पाया। ईरानी मीडिया मौजिब गुरु वजीर मोहसिन नकवी ईरानी क़यादत से मुलाकात कंदो। मोहसिन नकवी ईरानी क़यादत के अमरीका ईरान में तय थियल मुआहदे से मुबारक देने से गड गाल मरहले बाबत मुशावरत कंदो। ईरानी परडे वजीर अब्बास चिराग़ची अज स्विट्ज़रलैंड के दौरे का इम्कान। अमरीकी खसूसी नुमाइंदो ईस्टर विटकोप स्विट्ज़रलैंड पहुंतल। अमरीकी न्यूज वेबसाइट मौजूद ईस्टर विटकोप ईरान साइट में मामलों के गाढ़ स्विट्ज़रलैंड पहुंतो। ईरानी वफद भी स्विट्ज़रलैंड पहुंचो। जंगबंदी के ऐलान बावजूद इसराइल जा लबनान से फिजाई हमला जारी। पंज शहरी शहीद केतरा ही जख्मी। लबनानी अख्तियार मूजिब इसराइली जंगी जहाजन ए ड्रोन्स नबतिया के इलाक में आबादियों के निशानो बनाया। इसराइली फौज पारा इमारतों से बमबारी का सिलसिलो वक्फे वक्फे से जारी है। नायब वजीर आजम इसहाक डार मिस्र रवानो। चैन मुल्की परडे वजीर इजलास में शिरकत कंदो। कायरा में थींदड़ चार मुल्की इजलास में सऊदी अरब तुर्किया मिस्र जा परडे वजीर शिरकत कंदा। इजलास में खिते सूरत हाल ईरान अमरीका मामलों के अगबराई जायजो वरतो वेंदो। 407 खरब 41 अरब 55 करोड़ का वधिक जा लाजमी खर्चन जा तफसील कौमी असेंबली में पेश। मुल्की ब्याज देने लाय 69 खरब 82 अरब का वधिक रकम रखी वही। रिपोर्ट मौजूद मुल्की कर्ज देने लाय 259 खरब 92 अरब 20 करोड़ रुपया रखा व्या। मुल्की कर्जन से ब्याज देने लाय 69 खरब 82 अरब का वधिक रकम रखी वही। परडे कर्जन की वापसी लाय 58 खरब 36 अरब का वधिक रकम रखी वही। परडे कर्जन से ब्याज देने लाय 10 खरब 41 अरब 39 करोड़ रुपया रखा व्या। सुप्रीम कोर्ट लाय 7 अरब 44 करोड़ रखा व्या। वफाकी आईनी अदालत लाय 6 अरब 4 करोड़ का वधिक की रकम रखी वही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाय 2 अरब 36 करोड़ मुख्तस कौमी असेंबली लाय 7 अरब 96 करोड़ ए सेनेट लाय 6 अरब 92 करोड़ रखा व्या। सदर के पर्सनल ऑफिस के मुलाजमन के अलाउंस लाय 1 अरब 83 करोड़ रुपया रखा व्या। बजट में पगारदार तबके से बार विजन बदला टैक्स उगाड़ी के बेहतर कर रहा है। टैक्स दींदड़ ए उगाड़ी कंदड़ ऑफिसर विच में तारुक के खात्मे लाय फीसले सिस्टम आणू पाया। कौमी असेंबली में बजट से बहस के सेड़ींदे नाणे वे औरंगजेब है तो असा कोशिश रंग लातो है। खेते में जंग खत्म थी है। पाकिस्तान अमरीका ईरान के गालियों की मेज से विहारियो। पाकिस्तान जंग रोकने में अहम किरदार अदा कर। वजीर आजम ए फील्ड मार्शल अवाम के वादायू पेश किया। सिंध असेंबली में बजट से बहस जारी। अपोजिशन मेंबर की बजट से तनकीद। अरब साल का मौजूद मसला हल न थियण जो दाहू। एमक्यूएम एमपीए फहीम पटनी अरड़ी तरमीम से सूबे में अमल न थियण सबब मसला है। सूबो वफाक का पैसा वी विरासत नो करे। पीपीएमपीए नूर मोहम्मद बुरगरी चोर दरवाजे का नायू आया। बोर्ड सबब मुझे तक या मुतासर थियल स्कूल ठाए दिना वन। आबादगार व पानी ला परेशान है। पंजाब पारा रोकियल पानी वी खोट खत्म कई वे। आजाद कश्मीर में अमन तबाह करने वाली भारतीय कोशिश नाकाम थी। पाकिस्तान खिलाफ कम कंदड़ टोलन जो तालुक भारत से ही साबित थन्दो है। पार्लियामेंट में साफिन से गालाइंदे ख्वाजा आसिफ चयावत वाल कश्मीर में भारतीय जुल्मन जो ड्रिघो दास्तान है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी पुठियां भारत ए अफगानिस्तान जा हथ हैं। लाहौर की दहशतगर्दी अदालत 9 मई से पुलिस जो गाड़ियों साण वाले केस जो फैसलो बुधा छो। शाह मोहम्मद कुरैशी बरी यासमीन राशिद उमर सरफराज सीमा ए एजाज चौधरी के 10,000 साल कैद की सजा। लाहौर की दहशतगर्दी अदालत कोट लखपत जेल में केस जो फैसलो बुधाया वो। सिंध खुराक खाते में अरबे रूपये की करप्शन कंदड़ पंज ऑफिसर ए मुलाजमन के नौकरियों में निकाली। जिम्मेवार का 2 अरब 58 करोड़ 28 लख का उगाने जो भी हुक्म। केस एंटी करप्शन हवाले फूड इंस्पेक्टर कंद कोट बलक शेर शेख फूड सुपरवाइजर गुलाबजी हबीबुल्ला अबड़ो फूड सुपरवाइजर जोई अलियस करपंवर फूड सुपरवाइजर मजीद किरियो दीदार हुसैन मंगसी फूड इंस्पेक्टर हाली रोड हैदराबाद मोहम्मद अली मंगसी की नौकरी में निकाली दिनी वही। खुराक खातिर सूबाई वजीर मखदूम महबूब जमान चयात बरतरफ ऑफिसर जहां केस एंटी करप्शन के मोकलिया वा जिम्मेवार का पैसा उगाने अदालतों में सिविल सूट दाखिल कया वा। केपी के इलाके बनू में वेन ए कार रोड से लगायल बारूदी मवाद से टकराए बिन इमदादी कारकुन समेत 7 जणा मारजी वा 3 जख्मी। डीपीओ बनू चयो आहे त मलका पेरा में रोड भरिसां धमाके सबब वेन में सवार पंज ऐं कार में सवार ॼणा मारिजी विया। लाश ऐं टे ज़ख़्मी अस्पताल मुंतकल। बारूदी मवाद रोड जे किनारे सां लॻायो वियो हो। गोड़की वेझो ज़मीन जे मालिकी तां बिंदुड़ में झेड़ो, हिकु ॼणो क़तल। नूर मोहम्मद शर में शर बरादरी जे बिंदुड़ में झेड़ो थियो। झेड़े दौरान गोरियूं लॻण सबब राशिद शर मारिजी वियो। हिकु ॼणे जी क़तल बाद धुरियुनि में छिकटाण वधी वई। सेवण में चार ॾींहं अॻु घर ठाहिण लाइ बैंक मां पैसा वठण बाद गुम थियल पीरसन जो लाश हथु। घोट नओ वाहण जे रवासी पीरसन मोहम्मद सदीक हाले पुट जो लाश जहाज़ चौक तां मिलियो। पीरसन जे वारसनि चवणा त पीरसन खे पैसनि जे लालच में अगवाबाद
2: Telenor की वीकली एक्सट्रीम प्लस ऑफर लगाओ 530 रुपए में 60 जीबी डेटा और 15,000 Telenor।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
4: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
5: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
6: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
7: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
7: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
6: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
6: 0331252576।
7: जी हाँ 2315525786
6: GFM रेडियो नेटवर्क
7: सिंध जो आवाज़।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीहन जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
1: अगर करूँ जरा का

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

बजट में पघारदार तबके ते 12 जन बदिरां टैक्स उगाड़ी के बेहतर करे रहा आहियूं। टैक्स ॾींदड़ ऐं उगाड़ी कंदड़ आफिसर विच में तालुक जे ख़ात्मे लाइ फीस लेस सिस्टम आणे रहा आहियूं। क़ौमी असेंबली में बजट ते बहस खे सेड़ींदे नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त असांजी कोशिश रंग लाथो आहे, ख़िते मां जंग थी आहे। पाकिस्तान अमरीका ऐं ईरान खे ॻाल्हियुनि जी मेज़ ते विहारियो, पाकिस्तान जंग रोकण में अहम किरदार अदा कयो। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल ऐं अवाम खे वाधायूं पेश कयां थो। सिंध असेंबली में बजट ते बहस जारी, अपोजिशन मेंबर सूबाई बजट खे रद्द करे छॾियो, सालनि खां रहियल तरक़ियाती मनसूबा ते सख़्त तनक़ीद। हुकूमती मेंबर्स पारां बजट जी वाखाण, तरक़ियाती मनसूबनि जी तारीफ़ कंदा रहिया। एमक्यूएम जे एमपीए फहीम पटनी चयो त अरिड़हीं तरमीम ते सूबे में अमल न थियण सबब मसला पैदा थिया आहिनि, सूबो वफ़ाक़ खां पैसा वठी विरासत नथो करे। पीपी एमपीए नूर मोहम्मद बुरगड़ी चयो त चोर दरवाजे खां नाहियूं आया, बोर्ड सबब मुंहिंजे तक जा मुतासिर थियल स्कूल ठाहे ॾिना वञनि। आबादगार बि पाणी लाइ परेशान आहिनि, पंजाब पारां रोकियल पाणी वठी कोर्ट ख़तम कई वञे। राणा सनाउला बजट पास, वज़ीर आज़म जी तब्दीली वारी ख़बरनि खे रद्द करे छॾियो। पार्लियामेंट में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनाउला चयो त वज़ीर आज़म बहितरीन कम करे रहियो आहे, कुझु माण्हू कूड़ियूं ख़बरूं पखेड़े मुल्क में अदम इस्तेहकाम पखेड़ण चाहिनि था, अहिड़ो को मामिलो नाहे। लाहौर जी दहशतगर्दी टोड़ अदालत 9 मई ते पुलिस जूं गाॾियूं साड़ण वारे केस जो फैसलो ॿुधाए छॾियो। शाह महमूद कुरैशी बरी, यासमीन राशिद, उमर सरफराज सीमा ऐं एजाज चौधरी खे 10-10 साल कैद जी सज़ा। लाहौर जी दहशतगर्दी टोड़ अदालत कोट लखपत जेल में केस जो फैसलो ॿुधायो। पाणी जी बदतरीन खोट खे मुंहुं ॾींदड़ सिंध मथां बलोचिस्तान जो पाणी चोराइण जो इल्ज़ाम, मॉनिटरिंग लाइ बलोचिस्तान जो वफ़द सखर बिराज पहुतो। आबपाशी खाते बलोचिस्तान जे अमलदार मुदसिर ज़फ़र कोसो चयो त खीरतर केनाल जी घुर्ज 2400 क्यूसिक आहे, असांखे रुगो 1100 क्यूसिक पाणी मिले थो, बाक़ी पाणी चोरी थी वञे थो। सखर बिराज जी इंतज़ामिया जवाब ॾींदे चयो त सिंध खे पंहिंजे हिसे जो पाणी नथो मिले। पाणी चोराइण जो इल्ज़ाम बेबुनियाद आहे, कुफर डेम खे हटाइण बाद सूरत में बेहतरी थींदी। सिंध जे खुराक खाते में अरबे रुपयनि जी करप्शन कंदड़ 5 आफिसरनि ऐं मुलाज़मनि खे नौकरियुनि मां निकाली, ज़िमेवारनि खां 2.65 करोड़ खां वधीक उगड़ण जो बि हुकुम। केस एंटी करप्शन हवाले, फूड इंस्पेक्टर कंदकोट बलखशेर शेख, फूड सुपरवाइज़र गोलारची हबीबुल्ला अबड़ो, फूड सुपरवाइज़र जोही अली असर पंवर, फूड सुपरवाइज़र मजीद कीरियो, दीदार हुसैन वक्सी, फूड इंस्पेक्टर हाली रोड हैदराबाद मोहम्मद अली वक्सी खे नौकरीअ मां

0: निकाली डिनी वई। खुराक खाते की सूम महबूब जमान है बरतरफ ऑफिसर जा केस एंटी करप्शन के मोकलिया वह जिम्मेवार का पैसा उगड़ लाय अदालत में सिविल सूट दाखिल क्या वा। घोटकी वेझो जमीन की मालिकी तां बिन धुरियन में जेड़ो एक जड़ो कतल घोट नूर मोहम्मद शहर में शहर बिरादरी की बिन धुरियन में जेड़ो थियो जेड़े दौरान गोलियों लगन सबब राशिद शहर मार जीवो एक जड़े के कतल बाद धुरियन में छिकताण वधी वई। सेवड़ में चार ढी अग घर ठाण लाय बैंक मां पैसा वठण बाद गुम थियल पीरसन जो लाश हथ घोठ नव वाहण के रवासी पीरसन मोहम्मद सिद्दीक आले पोटो जो लाश जहाज चौक तां मिलियो। पीरसन के वारिसन जो चवण है तो पीरसन के पैसन की लालच में अगवाबाद तशद्दुद बाद कतल कयो वियो आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 0331252576।
4: जी हा 2315525786
3: GAFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

स्ट्रेंथ की हो तो आवाज भी स्ट्रेंथ की है। GFM 88 नेटवर्क स्ट्रेंथ की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: इसराइली हमलन बाद अपना हरमुस के बीहर बंद कर छो। ईरान की गडियल मिलिट्री कमांड है अपना हरमुस बहरी जहाज लाए बंद रहो। हरमुस के मफामती यादाश की भजगड़ी से बंद किया। लबनान से इसराइली हमला अं भी जारी हमला जारी रहा तो सख्त कदम खया वेंदा।

ईरान सां ॻाल्हियुनि जे ॿिए मरहले लाइ अमरीकी वफ़द स्विट्ज़रलैंड पहुतल। ईरानी वफ़द बि कुझु देर में तेहरान खां स्विट्ज़रलैंड लाइ रवानो थींदो। स्विट्ज़रलैंड पहुतल अमरीकी वफ़द में स्टोवट कोफ ऐं जेरिड किश्नर शामिल। ईरानी वफ़द स्पीकर जी क़यादत स्पीकर बाकर कारीपाप कंदो। वॾे वज़ीर अब्बास राक्षी बि वफ़द जो हिसो हूंदो। ईरान तसदीक करे छॾी। अमरीकी नायब सदर जे डी वेंस चयो आहे त ईरान सां ॻाल्हियुनि बाबति मामला सुठे तरीक़े सां हली रहिया आहिनि। थी सघे थो त कुझु ॾींहनि में मां बि स्विट्ज़रलैंड वञा। ईरान तरफ़ा अपना हुर्मुज़ खे बंदि करण जा के बि सबूत मौजूद न आहिनि। स्विट्ज़रलैंड चयो आहे त मुआहिदे लाइ मुख़्तलिफ़ मुल्क ॻाल्हियूं जारी रखण लाइ कोशिशुनि में रुधल आहिनि। पाकिस्तान पारां अमरीका ईरान ॻाल्हियुनि में डेड लॉक ख़तम करण वारियूं कोशिशूं तेज़। वफ़ाकी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी तेहरान में ईरानी पॾे वज़ीर अब्बास राक्षी सां मुलाक़ात। मुलाक़ात दौरान ईरान ऐं अमरीका विच में तय थियल मफ़ाहमत ते ॻाल्हियुनि जे ॿिए दौर बाबति मुशावरत थी।

0: It's 7:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
4: डाडू सुठो
3: जीए FM 88 नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
5: सुनते रहो जीए FM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अब्बास अराग्ची बे वफद जो हिस्सो हुंदो। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस चयो आहे त ईरान सां ॻाल्हियुनि बाबति मामला सुठे तरीक़े सां हली रहिया आहिनि। ॻाल्हियूं सुभाणे शुरू थींदियूं, थी सघे थो त कुझु ॾींहनि में मां बि स्विट्ज़रलैंड वञा। ईरान ऐं अमेरिका विच में टेक्निकल सतह ते ॻाल्हियूं सुभाणे स्विट्ज़रलैंड जे शहर बर्गन स्टॉक में थी रहियूं आहिनि। पाकिस्तान ऐं कतर जा नुमाइंदा बि ट्रैकड़ी तौर ॻाल्हियुनि में शरीक थींदा। परडे॒ही तर्जुमान ताहिर हुसैन अंदरा बि चयो आहे त पाकिस्तान ट्रैकड़ी तौर इस्लामाबाद मफ़ामती याददाश्त नामे खे अॻिते वधाइण में सहूलतकारी जारी रखंदो। ईरानी फ़ौज लबनान ते इसराइली हमलनि बाद आबनाए हुर्मस खे ॿीहर बंदि करे छॾियो। ईरान जी बंद रहंदो। हुर्मस खे मफ़ामती याददाश्त नामे जी भञकड़ीअ ते बंदि कयो वियो। लबनान ते इसराइली हमला अञा बि जारी आहिनि। हमला जारी रहिया त वधीक सख़्त कदम खया वेंदा। जंगबंदी जे ऐलान बावजूद इसराइल जा लबनान ते फिज़ाई हमला जारी। 7 शहरी शहीद, केतिराई ज़ख़्मी। लबनानी अख़्तियारनि मूजिबि इसराइली जंगी जहाज़नि ऐं ड्रोन्स नबतिया जे इलाइक़नि में आबादियुनि खे निशानो बणायो। इसराइली फ़ौज पारां इमारतुनि ते बमबारीअ जो सिलसिलो वक़फ़े वक़फ़े सां जारी आहे।

बजट में पगारदार तबके ते बार विझण बदिरां टैक्स उगाड़ीअ खे बहितर करे रहिया आहियूं। टैक्स ॾींदड़ ऐं उगाड़ी कंदड़ ऑफिसर विच में तालुक जे ख़ात्मे लाइ फीस लेस सिस्टम आणे रहिया आहियूं। क़ौमी असेंबली में बजट ते बहस खे सेड़ींदे नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त असांजी कोशिशुनि रंग लाथो आहे। खिते मां जंग ख़तम थी आहे। पाकिस्तान अमरीका ऐं ईरान खे ॻाल्हियुनि जे मेज़ ते विहारियो। पाकिस्तान जंग रोकण में अहम किरदार अदा कयो। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल ऐं अवाम खे वाधायूं पेश कयां थो।

सिंध असेंबलीअ में बजट ते बहस जारी। अपोजिशन मेंबर सूबाई बजट खे रद्द करे छॾियो। सालनि खां रहियल तरक़ियाती मनसूबा मुकमल न थियण ते सख़्त तनक़ीद। हुकूमती मेंबर्स पारां बजट जी वाखाण। तरक़ियाती मनसूबनि जी तारीफ़ कंदा रहिया। एम क्यू एम जे एम पी ए फहीम पटनी चयो त अरिड़हीं तरमीम ते सूबे में अमल न थियण सबबि मसला आहिनि। सूबो वफ़ाक़ खां पैसा वठी विरासत नथो करे। पीपल्स पार्टी एम पी ए नूर मोहम्मद दरवाज़े खां नायूं आया। बोर्ड सबबि मुंहिंजे तक जा मुतासिर थियल स्कूल ठाहे ॾिना वञनि। आबादगार बि पाणीअ लाइ परेशान आहिनि। पंजाब पारां रोकियल पाणी वठी खोट ख़तम कई वञे। राणा सनावला बजट बाद वज़ीर आज़म जी तब्दीली वारनि ख़बरुनि खे रद्द करे छॾियो। पार्लियामेंट में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनावला चयो आहे त वज़ीर आज़म बहितरीन कम करे रहियो आहे। कुझु माण्हू कूड़ियूं ख़बरूं पखेड़े मुल्क में अदम इस्तेहकाम पखेड़ण चाहिनि था। अहिड़ो को बि मामिलो नाहे।

0: लाहौर जी दहशतगर्दी टोल अदालत 9 मई ते पुलिस जो गाड़ियों साड़न वाले केस जो फैसलो बुधाए छो। शाह महमूद कुरैशी, बरी यासमीन राशिद, उमर सरफराज चीमा ए एजाज चौधरी के 10-10 साल कैद की सजा। लाहौर की दहशतगर्दी टोल अदालत कोट लखपत जेल में केस जो फैसलो बुधायो। पानी की बदतरीन खोट के मुंह डींदड़ सिंध मथा बलोचिस्तान जो पानी चोराने जो इल्जाम। मॉनिटरिंग लाए बलोचिस्तान जो वफद सखर बिराज पहुंतो। अपाशी खाते बलोचिस्तान के अमलदार मुदसर जफर खोसो खीरथर कैनाल की घुर्ज 2400 क्यूसिक है, असा के रुगो 1100 क्यूसिक पानी मिले तो, बाकी पानी चोरी थी वे तो। सखर बिराज की इंतजामिया जवाब डींदे सिंध के पैंजे हिस्से जो पानी ही न तो मिले। पानी चोराने जो इल्जाम बेबुनियाद है, कूफर डैम के हटाने बाद सूरत हाल में बेहतरी थी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: आई हां गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार हलाण लाए
4: असान जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हाँ, 2315525786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

Ay, ay, ay, la mía. Sao de ñaye, está pesado de ñaye.

0: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: ईरान ऐं अमेरिका विच में इस्लामाबाद मफ़ामदी याददाश्त नामे तहत ॻाल्हियुनि जो ॿियो मरहलो सुभाणे स्विट्ज़रलैंड में थींदो। स्टीव विटकॉफ ऐं जेड कुशनर ते ॿधल अमरीकी वफ़द अॻुवाटी स्विट्ज़रलैंड में मौजूद। ईरानी वफ़द बि स्पीकर बाकिर कालिबाफ जी अॻुवाणी में तहरान खां स्विट्ज़रलैंड रवानो थी वियो। परडेही वज़ीर अब्बास इराकची बि वफ़द जो हिसो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ पारां ॻाल्हियुनि जो हिसो थियण जो इम्कान। अमरीकी नायब सदर बि स्विट्ज़रलैंड वञण जो इशारो ॾेई छॾियो। जेडी वेंस चयो आहे त ईरान सां ॻाल्हियुनि बाबति मामला सुठे तरीक़े सां हली रहिया आहिनि। ॻाल्हियूं सुभाणे शुरू थींदियूं। थी सघे थो त ॻाल्हियुनि में शिरकत लाइ मां बि कुझु ॾींहनि में स्विट्ज़रलैंड वञा।
1: ईरान ऐं अमरीका विच में टेक्निकल सतह ते ॻाल्हियूं सुभाणे स्विट्ज़रलैंड जे शहर बर्गन स्टॉक में थी रहियूं आहिनि। पाकिस्तान ऐं कतर जा नुमाइंदा बि सालिस तौर ॻाल्हियुनि में शरीक थींदा। पहिरे तर्जुमान तारिफ़ चंडीदराबी चयो आहे त पाकिस्तान सालिस तौर इस्लामाबाद मुफ़ामती याददाश्त खे अॻिते वधाइण में सहूलतकारी जारी रखंदो।

लाहौर की दहशतगर्दी टोड़ अदालत 9 मई से पुलिस जो गाड़ियों साड़ने वाले केस जो फैसलो बुधाए छो। शाह महमूद कुरेशी बरी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी के 10-10 साल कैद की सजा। लाहौर की दहशतगर्दी टोड़ अदालत कोट लखपत जेल में केस जो फैसलो बुधाया।

0: आयो पंजाब जो घोड़ा घोड़ा कई सिंध पांजे शहर जो पानी पी वियो आ कब नदी जो पानी हो असा घुरियो तो कोनो असा डेंट तो कोन दिना हा असा केतरो पानी पानी असा जो काउंट वो थिंदो जेको इंडेंट जे जरिए थिंदो अज भी तव दिसो नील आ डाउन स्ट्रीम कोठरी नील आसो न ये जून पे पूरो थे जुलाई पे शुरू थे 15 मई का
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: तो पोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
4: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
3: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलाण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 0331252576
4: जी हाँ 2315525786
3: GAFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

बजू तसी माठ लगी मेरे घन अखू यार अजी बजू तसी माठ लगी मेरे घन मुझे माना निशान मारो मुर्गी महबूबन अज माना निशान मारो मुर्गी माशूबन।

0: It's 9:15 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: सिंध के माथे का झूमर
3: GFM 88 नेटवर्क
4: सिंध की आवाज
3: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

होई न दिल में लिखाई हां जेका हुई खता बुधाई हां दिल खोले साई खताई हां दिल खोले खोले

सभे आहे रवा परचण रुसण साईं आहे रवा आहे तो प्यारु करण।

कजन दान कजन कजन दा पार जन बेड़िया चारे फरहा नहीं छरमी न छन अण तारुन के तारे तांगो तार कजन हाने पक्का यार कजन।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।